आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: भारत सुबह के 6 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। MMM बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यह विषय चुना गया है MMM के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो कि इस रविवार 27 सितंबर को गेजू में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। महोवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव आंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं,

और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर पर भरा रहा। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम

सकती हैं। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां हल्की बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: नमस्कार, सुबह की ये बेला है, भोर की ये बेला है। आज रविवार 27 सितंबर की इस भोर की बेला में आपका हम स्वागत करते हैं। ये भोर की बेला आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो। सुबह का ये नजराना आप लोगों के लिए प्रसन्नता, सुख और शांति लाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम। और इस बेला में सुनते हैं आर्य सभा मॉरिशस द्वारा आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। स्वामी आशुतोष जी ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिनके बारे में बताएंगे डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी।
2: मधुर शहद से हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।
3: वैदिक वाणी के आदरणीय श्रोताओं, सादर नमस्ते। स्टूडियो में आज उपस्थित हैं पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज। यह मॉरिशस में आपकी पांचवी यात्रा है। पहली बार आप 2014 में मॉरिशस पधारे थे। हमारा सौभाग्य है कि पुनः आपने इस देश में पदार्पण किया है। हम स्वामी जी का अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज का संदेश प्रस्तुत करने की कृपा करें।

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा।

सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी सुधी श्रोतृवृंद को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक वाणी के इस क्रम में मंत्र प्रस्तुत करते हैं ऋग्वेद का पहला मंडल पहला सूक्त मंत्र संख्या 7। ये परमात्मा की वेदवाणी जो हम सब जीवों के लिए अत्यंत कल्याण करने वाली है। परमात्मा हमको उपदेश दे करके ज्ञान दे करके अपना प्रिय पुत्र

0: बनाना चाहते हैं। तो मंत्र के पद पहले देखते हैं। मंत्र के पद हैं ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तः धिया वयम् नमो भरंतः एमसि। मंत्र में संबोधन पद है अग्ने, हे ज्ञान प्रकाशक परमात्मा, आप कि हम भक्ति के लिए, आराधना के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ करें। सो परमपिता परमात्मा ने इस मंत्र में ये शिक्षा दी है, विद्या दी है कि हम सब लोगों को ईश्वर का ध्यान आराधना प्रत्येक दिन करनी चाहिए। प्रत्येक दिन में दो बार, संध्या काल में अर्थात सायंकाल और प्रातःकाल। ये मंत्र बीज मंत्र उपासना का है। ईश्वर का ध्यान कितने बार करना है तो कहा प्रत्येक दिन करना है, और सायं प्रातःकाल करना है। किस लिए करना है? आत्मकल्याण के लिए। महान ऋषि दयानंद सरस्वती जी के वाक्य हैं, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की पूजा, भक्ति, यह पूर्ण विद्या है। पूर्ण विद्या है। लोग कहते हैं ये भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, ये सब मिल करके समग्र कहलाते हैं। शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म निष्काम करते हैं, तदुपरांत हम शुद्ध भक्ति आराधना करते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना मिल करके ये वैदिक भक्ति कहलाती है। तो उनका वाक्य है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, पूजा आराधना, यह पूर्ण विद्या है, और यह सब विद्याओं का मूल है। इसी आराधना विद्या से ही हमारी सारी अपराविद्याएं और पराविद्याएं प्रकाशित होती हैं। अपराविद्या है समस्त ज्ञान विज्ञान, भौतिक पदार्थ, गृहस्थ की विद्या, पशुपालन, खेती, कृषि और विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान, ये सब कहलाती है अपरा विद्या, जो हमको संसार में अभ्युदय देती हैं, जिससे हम बुद्धिमान, बलवान, निरोग, चरित्रवान, समाज सेवी, उपकार करने वाले बनते हुए वैदिक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना कर लेना, इतना जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य है अपरा विद्या का, जो वेदों से ही प्रकाशित हुआ है। चार वेद, छह शास्त्र, 11 उपनिषद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपवेद इत्यादि बहुत सारा वैदिक साहित्य उपलब्ध है, जिसको ऋषि मुनियों ने योग समाधि के बल से उसको प्रणयन किया है। तो सारा का सारा ये विज्ञान है, पदार्थ की विद्याएं हैं, इन सब को ऋषि कहते हैं ये अपरा विद्याएं हैं। ये हमको संसार में जीना सिखाती हैं, संसार में वैभव को प्राप्त करने का मार्ग बताती हैं, हमको बहुत गुणवान महान बना देती हैं। इसके उपरांत अगला कार्य है जिसको मोक्ष कहते हैं, परमानंद, जो जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। तीन साधन हैं वैदिक व्यवस्था में धर्म का अनुष्ठान करना, ईश्वर की आज्ञाओं का मनसा वाचा कर्मणा पालन करने का नाम धर्म है, और उस धर्म से धन संपत्ति, वैभव, कीर्ति को कमा लेना, अर्न कर लेने का नाम अर्थ है। उस कमाए संसाधनों का उत्तम प्रकार से प्रयोग में लाना, स्वयं उनका प्रयोग करना, अन्य को उपलब्ध करवाना, इसका नाम कामना उपभोग है। जियो और जीने दो, मैं सुख से जीऊँ और मेरे बंधु बांधव, पड़ोसी लोग, मेरे देश के लोग भी सुख संपन्न हो, शांति का जीवन जीवें, पवित्र जीवन जीवें, सबके जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा हो, सभी लोग कर्तव्य परायण हो, सभी लोगों का आहार विहार वैदिक हो, दिनचर्या वैदिक हो, प्रातः जल्दी जागना, रात्रि को जल्दी सो जाना, सात्विक लघु आहार खाना, जिससे बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य बढ़े, ये हमारा भोजन इत्यादि का हो, ये सारा का सारा अभ्युदय कहलाता है। इसको सिद्ध करते करते मोक्ष अर्थात जहाँ समस्त दुखों का अंत हो जाता है, विनाश होता है, और पूर्ण तृप्ति, संतोष, आनंद, अविलसित आनंद की प्राप्ति होती है, जो कंप्लीट है, जो पूर्ण है, जहाँ कोई भी न्यूनता है ही नहीं, उसका नाम मोक्ष है। जहाँ पूर्ण आनंद है, पूर्ण ज्ञान है, निर्भीकता है, स्वतंत्रता है, पवित्रता है, ऐसी पदवी का नाम मोक्ष ऋषि लोग कहते हैं। जो जीते जी भी समाधि में अनुभव होता है और मरने के बाद नितांत मोक्ष मिलता है, ऐसी वैदिक ऋषियों की मान्यता है। तो ऋषि कहते हैं दयानंद जी कि ईश्वर का ध्यान पूर्ण विद्या है, ये सब विद्याओं का मूल है। जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र इस विद्या को भुला देता है, मनमानी करता है, स्वच्छंद जीवन जीता है, वहाँ पर अकाल मृत्यु होती है। ऋतुएं बिन मौसम के आती हैं, मौसम बदलता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, संबंध बिगड़ते हैं, घर परिवार में अशांति होती है, विघटन होता है, ये इस ध्यान योग विद्या को छोड़ने का परिणाम है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो योग विद्या का अभ्यास करेगा उसकी पहली कंडीशन है अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को पीड़ा नहीं दे सकते हैं, किसी को कड़वा नहीं बोलना है। तो यहाँ से जीवन का प्रारंभ होता है। तो किसी विचारक के वाक्य हैं, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग उद्यान, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। अन्य कवि के वाक्य हैं, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी जिनकी वाणी। जो ज्ञानी होगा उसकी वाणी के अंदर माधुर्य होगा, वो कड़वा नहीं बोलेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, यही ज्ञानी की पहचान है। जो सत्य बोले, मधुर बोले, हितकारी बोले, सार्थक बोले, और थोड़ा बोले, नपातुला बोले, और बहुत विचार के बोले, ये वाणी का गुण ऐसा है जो व्यक्ति को देवत्व का कोटि दे देता है, देवता बन जाता है। वाणी जोड़ती भी है, तोड़ती भी है। इसलिए साधना करने वाले को, योगाभ्यास करने वाले को सावधान किया कि वाणी मधुर हो। जहाँ तुम जाओ वहाँ मधुरता घोल दो, आना जाना उठना बैठना, जहाँ जाओ वहाँ के माहौल में मधुरता भर दो, कड़वाहट दूर कर दो, ऐसे ऊंचे भाव ऋषियों ने हमको दिए हैं। तो मंत्र का हम समापन भाव करते हुए, प्रत्येक दिन सायं प्रातःकाल धारणा, ध्यान, समाधि, समर्पण की भावना से प्रभु को नमस्कार करते हुए उनके पास बैठना, उनके ज्ञान, बल, आनंद गुणों को पा करके ज्ञानी बनना, गुणवान बनना, आनंदित रहना और दुनिया के लोगों को आनंद की वृष्टि करना, आनंद बांटना। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। इति ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे आचार्य आशुतोष जी को।

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फिनिक्स के निवासियों को सूचित करता है कि रॉयल रोड फिनिक्स के एक भाग में, असनगाफा रोड के एक भाग में, हजारी सिंह लेन के एक भाग में, रॉबिन्सन लेन 1, 2, 3 और 4 में फिक्सों

Abdul Razak Mohammed Center, Cubicle, Energies, Women Center और आसपास के इलाकों में आज रविवार 27 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी नोत्रडाम के निवासियों को सूचित करता है कि आज रविवार 27 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर लमाही के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि आज रविवार 27 सितंबर को रॉयल रोड लमाही के एक भाग में मलाकफ और मीगन लेन में सुबह 9 बजे से दिन के 11 बजे तक रॉयल रोड लामाघी और नातू लेन में आज ही रविवार 7 सितंबर को सुबह के 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। तो इस समय 6:18 हुए हैं और लेकर आए हैं हम कुछ ऐसे गाने जिससे मन आपका बड़ा ही प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा ही हल्का हो जाएगा। वैसे भी परिवार के बीच में रहना बहुत सौभाग्य की बात है और परिवार में सुख और शांति रहे ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसी का परिवार रहे बहुत सुख और शांति के साथ, हर किसी को मिले ऊपर वाले का आशीर्वाद, हर किसी को मिले मेहरबानी ऊपर वाले की।

प्यार और मंदिर की क्या बात कीजिए, प्यार और ईश्वर की क्या बात कीजिए। प्यार तो ईश्वर को पाने का एक जरिया होता है। जो आप अपनों के बीच, जो आप औरों के बीच प्यार बांटते चलेंगे तो ईश्वर अवश्य आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शांति बिखेरेंगे। सुनते हैं ये गाना, ये गीत हम पेश कर रहे हैं आपके लिए, और इस गाने के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे समाचारों के लिए। करुणा लेकर आएंगी समाचार बुलेटिन आज का 6:30 बजे।

6:30 हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो इस रविवार को 27 सितंबर को रिजवी में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव, क्योंकि दो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त। मोगवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, ये अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा। आज से पितृपक्ष शुरू, लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण और श्रद्धांजलि। विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र। और अब समाचार विस्तार से। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए।

0: ये जो इस रविवार 27 सितंबर को गेजू में मनाया जाएगा। मॉरिशस के राजनीतिक इतिहास में एमएमएम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये देश की उन राजनीतिक पार्टियों में से एक है जो 60-0 के चुनावी जीत से जुड़ी रही। इनमें सबसे हालिया जीत नवंबर 2024 में हुई थी। 57 वर्षों के दौरान एमएमएम ने उतार चढ़ाव भी देखे, जिसमें कई नेताओं और सदस्यों का पार्टी से अलग होना और नए सदस्यों का जुड़ना शामिल है। दरअसल इस पार्टी का जन्म ऐसे राजनीतिक माहौल में हुआ जिसमें छात्र कार्यकर्ताओं की लामबंदी भी प्रमुख थी। अब हम आपको एमएमएम के एक पूर्व सदस्य और ट्रेड यूनियन नेता जैक बिजलाल का अनुभव सुनाते हैं। उनसे बातचीत की राजमिला सीतामुनि ने, विवरण आस्था गोबिन का है।
1: Un club des étudiants est créé en 68, devenu fait un premier forum dans la salle des fêtes du QPIP en juin.
2: स्टूडेंट क्लब की स्थापना 1968 में हुई। क्यूपिप टाउन हॉल में हमारा पहला फोरम लगा। हमने अपील की कि देश का भविष्य नौजवानों के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। युवाओं ने अपना हौसला दिखाया। इसके बाद पार्टी का गठन हुआ, मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन। 1977 के चुनाव में भी पार्टी ने भाग लिया। 1972 में नेताओं को जेल भी हुई, कई गठबंधन टूटे और छोटे छोटे गुट भी बने।
0: एमएमएम के एक अन्य पूर्व सदस्य आले लारिडू हैं। वे 17 वर्ष की उम्र में पार्टी में शामिल हुई थी। आज उनकी उम्र 74 वर्ष की है। उनका कहना है कि उस समय पार्टी के कार्यकर्ता मॉरिशस को एक बेहतर द्वीप बनाने के लिए नए विचारों और मुद्दों के साथ आगे आती थी। उनके अनुसार वे चिंताएं आज भी प्रासंगिक हैं। आले लारिडू ने इस बारे में राजमिला सीतामुनि से विस्तार से बात की, विवरण आस्था गोबिन का।
2: देश के हित के लिए काम करना चाहिए, देश प्रेम है और देश के विकास की इच्छा है। कर्मचारी वर्ग से भी अपील है कि देश के भविष्य और उसकी तरक्की के लिए मेहनत करें। कम संसाधन में भी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। हमारे पास बुद्धि है और सही सोचने की क्षमता, सही निर्णय लेने का संकल्प। वैश्विक स्तर पर हमारे सामने अभी बड़ी चुनौतियाँ हैं।
0: जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। दो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। इसके चलते छात्रों और कर्मचारियों को एक नई व्यवस्था के लिए तैयार रहना होगा। छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करने और प्रभावित कर्मचारियों की पुनर्तैनाती के लिए भी उपाय किए जाने हैं। इस बारे में अधिक जानकारी उर्वशी भिखारी और आस्था गोबिन के साथ।
2: सेंट बार्थोलोम्यूज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता जनवरी 2027 से बंद होगी। ये फैसला प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी के बोर्ड ने लिया है। दोनों कॉलेजों में छात्रों की संख्या सहायता पाने के लिए तय न्यूनतम संख्या से कम है। सरकार ने इस फैसले का संज्ञान लिया। प्रभावित छात्रों को उनके घर के पास दूसरे कॉलेजों में जगह दी जाएगी। उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे। दोनों कॉलेजों के योग्य स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को मॉरिशस एजुकेशन डेवलपमेंट कंपनी यानी मेडको में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेडको के दूसरे कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों या ऐसे विभागों में तैनात किया जा सकेगा जहाँ उनके काम की जरूरत है।
0: बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए रचनात्मकता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राइज प्लस कार्यक्रम कल फिनिक्स रोटेरी क्लब द्वारा काथोबोन में स्थित हरिलाल चुरुमुनी गवर्नमेंट स्कूल में पायलट आधार पर शुरू किया गया। ज़वे अफ़ान आवां से यानी खेल के नए और रचनात्मक तरीकों, पढ़ने और गाने के माध्यम से शिक्षा देना, ये 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला और परिणामों के आधार पर मापा जाने वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में

0: नशीली दवाओं से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। कुणाल गोजी की रिपोर्ट।
1: इसने के नाटक खेल को बच्चों के लिए नए तरीके से तैयार किया गया है। इसे ज़मीन पर बनाया गया है जहां बच्चे लामागल की तरह कूदते हुए खेलते हैं। कुछ खाने अच्छे गुणों को दर्शाते हैं जबकि कुछ में बुरी आदतों जैसे नशीली दवाओं के सेवन को दिखाया गया है। यदि बच्चा सांप के डसने वाले खाने पर पहुँचता है तो वो नीचे जाकर जेल वाले खाने में पहुँच जाता है। इसके साथ बच्चों के लिए एक गीत भी है जिसे खुद बच्चे गाते हैं। इसके अलावा एक कॉमिक बुक भी है जिसमें खलनायक के रूप में नशीली दवाओं का प्रलोभन दिखाया गया है।
2: Nous pas capable imposer un choix aux enfants, mais nous capable montrer ce chemin qu'ils sont capables choisir et pour faire un meilleur choix dans l'avenir.
1: इस कार्यक्रम का नाम राइज प्लस है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिनिक्स रोटरी क्लब ने कठबोन में स्थित हरिलाल चुरुमुनी गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया।
3: Our PESAC pass rate fell down from 62% in 2022 to 47.9% in 2025. This reality tells us loud and clear that we must strengthen our support and teach it ways that reach the whole child.
1: इस परियोजना के दूसरे चरण में इसे देश के अन्य इलाकों में 36 रोटरी क्लबों के माध्यम से लागू करने और अगले 3 वर्षों के भीतर इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का लक्ष्य है। इस शिक्षण पद्धति का शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया लेकिन उनका मानना है कि माता पिता की भागीदारी के बिना ये प्रयास अधूरा रहेगा।
4: Beaucoup de jeunes parents disent aux autres qu'il y a une difficulté pour cause avec d'autres enfants. Ils disent aux autres qu'ils enfants là n'est plus écoute aux autres. Équipe de parents, donne de parents un outil qui manière de capable handle de bons enfants à la maison.
1: Ombudsperson for Children, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा करना है, का कहना है कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है।
5: C'est un sujet sensible et on a besoin de pouvoir leur donner à eux aussi les outils pour qu'ils puissent en parler avec les enfants et les adolescents.
1: Deputy Prime Minister ne nashili dawaon ke khilaf sarkar ki pratibaddhata dohrayi chahe ye samasya kisi bhi samajik ya aarthik varg mein ho.
5: Le gouvernement est pleinement engagé. Nous renforçons les lois. Nous développons les services de réhabilitation. Nous soutenons les familles touchées. Et aux trafiquants, je dis ceci, l'État ne reculera pas. Mais la répression seule ne suffit pas. La victoire se gagnera dans la prévention, dans l'éducation et dans la mobilisation de tous les citoyens.
1: स्कूलों में बच्चों को प्रभावित करने वाली नशीली दवाओं, धूम्रपान और शराब की समस्याओं के अलावा शिक्षा मंत्री के अनुसार कई अन्य मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में हैं। इनमें साइबर बुलिंग, परिवार के विघटन और शिक्षकों के खिलाफ हिंसा शामिल हैं।
0: मोहवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है। यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है जिसे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने गुरुवार को साझा किया। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है और यदि द्वीप के इस हिस्से में तेज बारिश नहीं होती है तो CWA ने चेतावनी दी है कि वो प्लेनविलहैम्स, मोका और गिवियनुआ के एक हिस्से में पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ से और पानी नहीं ले सकेगी। स्थिति में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। 17 सितंबर 2025 को मोहवाकवा का जलस्तर 93.1% था जबकि इस वर्ष इसी तारीख को ये 39.9% दर्ज किया गया। CWA का कहना है कि पानी में अतिरिक्त स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। CWA के संचार प्रभारी सुनील गोपाल से बातचीत की शैली निर्बन ने विवरण आस्था गोबिंद का।
6: Une vigne de plus en plus importante qui nous continue à servir de l'eau de façon très judicieuse et qui nous collabore dans sa
7: जिम्मेदाराना तरीके से पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस दिशा में सभी को राष्ट्रीय एकता का प्रमाण देना होगा। पानी की कमी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जनता को आश्वासन दिया जाता है कि हम पानी के अतिरिक्त स्रोतों की तलाश में हैं ताकि देश में पानी की आपूर्ति जारी

0: रही। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पानी की कटौती देश भर में जारी है। अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो आज पानी का भंडार खतरे के निशान से और कम होता। अगर आने वाले हफ्तों में बारिश होती है तो कुछ ढील लाई जा सकती है। हम जनता को सूचित करेंगे।
1: Comment nous pouvons évoluer en termes de la pluie hein, et nous pour informer le public.
2: CW ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो उपायों नए उपायों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में 17 जून से ही पानी की आपूर्ति के समय में कटौती की गई है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 5 अगस्त से प्रतिदिन 2 घंटे की कटौती लागू है। पीने के पानी के कुछ उपयोगों पर लगी पाबंदियों भी 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। आज 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष रिपोर्ट विधिमा सिबुरन के साथ।
3: पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। आम भाषा में इसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक इस परंपरा को माना जाता है। मान्यता है कि हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे पितृ अपने परिवार के साथ पृथ्वी में वापस आते हैं और उनके लिए किए गए तर्पण और श्राद्ध को वे स्वीकार करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
4: जो लोग बड़े बुजुर्गों का वंदन पूजन पाठन करते हैं, उनकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये चारों के चारों चीज़ें बढ़ाने के लिए पितृपक्ष हमारे सामने का, हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने दिया है। हम इसमें पितरों का पूजन करते हैं। उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं है, बस आटे का, जौ के आटे का या चावल का पिंड बना करके पिंड को रख करते हैं, उसमें पितरों को बुलाते हैं। जो कुछ हमसे भोजन बनता है, भोजन सामने रखा, पितरों को प्रणाम किया, पितर आए, उन्होंने भोजन इत्यादि ग्रहण किया और आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर फलता फूलता है, उस घर में समस्याएँ नहीं होती हैं। जहाँ पितरों का प्रकोप होता है, जहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है, वहाँ विकास रुक जाता है। कभी कभी तो वंश की वृद्धि भी रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है पितर के श्राप से। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे लिए 15 दिन का समय है कि हम 15 दिनों में पितरों का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
3: 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसके बाद किए जाने वाले पितरों, श्राद्ध और पिंडदान विस्तार से बताया गया है। इन दिनों में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में नए कपड़े, आभूषण या संपत्ति खरीदना और किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है।
2: स्वतंत्रता से वंचित होना बदलाव की इच्छा छोड़ देना नहीं है, यही संदेश वी आर पावरफुल नामक गीत के माध्यम से दिया गया है, जिसे महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है। ये पहल NGO कॉब जैम की है। इसके तहत संगीत और आर्ट थेरेपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इन महिलाओं के पुनर्वास को बढ़ावा देना है। राजमीला सीतामुनी, निर्मा नारायण रेड्डी।
3: यह पहल साल 2023 और 2024

0: इसके दौरान बोबासैन जेल में बंद महिलाओं के लिए आयोजित संगीत चिकित्सक कार्यशालाओं से शुरू हुई। इस कार्यक्रम को कलाकार और गैर सरकारी संस्था कॉपेडियम की संस्थापक शुरू किया था। एंजल ओंगो के मुताबिक यह कार्यशाला बोबासैन महिला जेल में आयोजित सभी संगीत थेरेपी सत्रों के अनुभव पर आधारित थी। इन कार्यशालाओं के दौरान महिलाओं ने अपनी कहानियों, भावनाएं और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर वी अ पावरफुल गीत तैयार किया गया। इस गीत को अमेरिकी कलाकार और संगीत थेरेपिस्ट रशेल रोज ने लिखा। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में संगीत के क्षेत्र से जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर इस गीत को तैयार किया। एंजल ओंगो कहते हैं
1: कि
0: पुनर्वास एक लंबी प्रक्रिया है। इन सत्रों में शामिल होकर बंधी महिलाओं को यह एहसास मिलाने की कोशिश की गई कि उनकी पहचान सिर्फ उनके बातें हुए इतिहास, उनके मामले या उनके किए गए काम से तय नहीं होती। उन्हें यह समझने का मौका मिला कि वे खुद कुछ नया बना सकती हैं, अपने फैसले ले सकती हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती हैं। एंजल ओंगो ने हमें सिखाया कि हमें खुद पर काबू रखना चाहिए और खुद को फिर से संभालना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। जब मैं जेल से बाहर आई तो पहले मुझे लोगों का सामना करने में डर लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आजादी छीन जाने से सपने देखना, कुछ नया करना और खुद को फिर से संभलना नहीं रुकता। वी आर पावरफुल इसी जज्बे की एक मिसाल है।
2: विदेशी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरा रहा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वे नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन की इस महासभा को संबोधित करने नहीं गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो अमेरिकी दौरे पर होने के बावजूद इसमें शरीक नहीं हुए। और पोप लियो 14 ने कैथोलिक चर्च में युवाओं द्वारा लाई जाने वाली उत्साह, ऊर्जा और प्रतिबद्धता की सराहना की। ये बात उन्होंने पेरिस में एक खुले मैदान में हुई प्रार्थना सभा के दौरान कही, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अनुमान है कि करीब 7 लाख लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पोप ने प्लास डी ला कोंकोर्ड में प्रार्थना सभा का संचालन किया। ये फ्रांस की उनकी 4 दिवसीय यात्रा का दूसरा दिन था। कई वरिष्ठ राजनेताओं ने भी इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। शुक्रवार को पोप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों से मुलाकात की थी। खबरों के अंत में मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह कर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आसमान में बादल घिरे रहेंगे सुबह के वक्त, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर, जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय की ऊंचाइयों पर जहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो कि आज 27 सितंबर को गैजुई में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव, दुशैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त। मोगवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20 प्रतिशत तक गिर सकता, यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का प्रमुख जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा। आज से पितृपक्ष शुरू, लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र। 6:53 हो चुके, बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है यूसुफ के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: स्कूल लेन मेलरोज में 73 साल की 73-year-old श्री किशोर साहू मोती, श्री किशोर साही मोती, जो किशोर से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रत्ना मोती के मकान स्कूल लेन मेलरोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लांश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। न्यू रोड कौचे मिलते में 71 साल के 71-year-old श्री सूर्य शर्मा महादू, श्री सूर्य शर्मा महादू, जो वैक औसिया फैक्ट्री से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती मीरा महादू के मकान न्यू रोड कौचे मिलते से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कोंस्टन सैंपियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। पारिजोलेन मेनिल में 77 साल की 77-year-old बीबी फेरोज पीरू पैदाइशी नाम श्रीनिवास इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10:30 इनके मकान पारिजोलेन मेनिल से उठाकर पहले हनफी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे एट 10:30 AM। मोसेलमा पोलाजी में 70 साल के 70-year-old श्री ज्ञानचंद सुकना जो भाईवा से जाने जाते थे और पहले इजिडोज फ्लाक रहते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी सुकना के मकान मोसेलमा पोलाजे से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड डेनिंगाम थ्रियोले में 36 साल के 36-year-old जनाब मुजाफर नूर सिंह जो जफर से जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन की 10 बजे इनके मकान रॉयल रोड डेनिंगाम थ्रियोले से निकाल कर दफनाने के लिए बुआ मौशाओं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 10 AM। लाफोज लेन पालमा कैट्रोबोन में 70 साल के 70-year-old श्री तहाल जैनोत जो राम से जाने जाते थे और पहले पुलिस कापोरल थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार को दिन के 10 बजे इनके मकान लाफोज लेन पालमा कैट्रोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा कैट्रोबोन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। यंग टाउ रोड घाबुआ में 54 साल के 54-year-old

बोले श्री अजय सिबारत, श्री अजय सिबारत जो लोलो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान योंग टाउ रोड गाँव बुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए गाँव बुआ की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 10:30 AM। मोसेलमा और तेलमा फॉरेस्ट साइड में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड श्री तानाजी लक्ष्मण, श्री तानाजी लक्ष्मण जो ताजुमे से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती ईश्वंती लक्ष्मण के मकान मोसेलमा और तेलमा फॉरेस्ट साइड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 9:30 AM। रुतबा से कथोबोन में 85 साल के 85 ईयर ओल्ड श्री जसमनदेव नक्चेदी, श्री जसमनदेव नक्चेदी जो पहले मॉरिशस टेलीकॉम के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे दिनेश कुमार नक्चेदी के मकान हुडबा से कटोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और कालीमाई गली बाउलो में 49 साल के 49 ईयर ओल्ड श्री उमा शंकर मंगर, श्री उमा शंकर मंगर जो विशाल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके माँ श्रीमती ललिता मंगर के मकान कालीमाई रोड बाउलो से उठाकर दाह संस्कार के लिए बाउलो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वालों को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड ने केओस को अपनाया किंतु कंट्रोल नियंत्रण खो बैठा। कोच टोमा टुखेल ने इंग्लैंड के पूरे खेल और स्टाइल में उथल पुथल मचा दी। फिर भी द थ्री लायंस हार गए क्योंकि सामने थे वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, जो बहुत जिद्दी और थोड़ा पागल भी थे। इंग्लैंड 2 स्पेन 3, हार के बावजूद मानना पड़ेगा कि खेल में परिवर्तन आया। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ इंग्लैंड मैदान पर उतरा। इंग्लैंड 2 स्पेन 3, पहला गोल लामिन यमाल ने स्कोर किया खेल के दूसरे मिनट पर ही। एक पहला गोल स्पेन की ओर से, लेकिन बाद में इंग्लैंड ने दो दो बार स्पेन को पेन दिया। गोर्डन का एक पहला इक्वलाइजर 36वें मिनट पर, फिर उसके बाद 4 मिनट बाद हैरी केन ने एक और गोल स्कोर किया। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड 2-1 से आगे और सेकंड हाफ की शुरुआत में अच्छा खेल होने लगा था। उसके बाद हैरी केन को मिला एक पेनाल्टी जो उसने मिस किया। यदि स्कोर कर दिया होता तो इंग्लैंड 3-1 से आगे होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद एलेक्स बेना का इक्वलाइजर 60वें मिनट पर और 74वें पर मिकेल ओयाब जाबाल ने एक और कील ठोंकी। अंततः इंग्लैंड 2 स्पेन 3, हार के बावजूद द थ्री लायंस की कहानी अब सिर्फ उम्मीदों की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामक फुटबॉल और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन की कहानी बनती जा रही है। अगला पड़ाव चेक रिपब्लिक। इसी मंगलवार को इंग्लैंड का अगला मैच होगा चेक रिपब्लिक के विरुद्ध। यूईएफए नेशंस लीग के बाकी नतीजे इस प्रकार हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में स्लोवेनिया और स्कॉटलैंड ने मैच ड्रॉ किया 0-0। सैन मैरिनो की हार हुई, वो भी होम

मैदान पे। फिनलैंड ने उसे 7-0 से पछाड़ा। सैन मैरिनो 0 फिनलैंड 7। इसमें पोजान पालो का एक शानदार हैट्रिक रही। सो सैन मैरिनो 7-0 से हार गया होम मैदान पे। नॉर्थ मैसेडोनिया 0 स्विट्जरलैंड 3। स्विट्जरलैंड के लिए फ्रेलिया का एक गोल, आमदूनी का एक डबल। फिर अल्बेनिया ने बेलारूस को 2-2 बार बेला। अल्बेनिया के लिए

क्रोएशिया के लिए लुका मोड्रिच अनुभवी खिलाड़ी लुका मोड्रिच का एक गोल रहा। मार्को पासालिच ने दूसरा गोल स्कोर किया। इंग्लैंड 2 स्पेन 3। स्लोवेकिया ने अपनी ओर से मोल्डोवा को 2-0 से परास्त किया। तो ग्रुप 4 में बुल्गेरिया 1 लग्जमबर्ग 2 आइसलैंड और इस्टोनिया ने मैच ड्रॉ किया 1-1। अब ये यूईएफए नेशंस लीग के मैच आज भी जारी रखे जाएंगे। जिब्राल्टर का मुकाबला आज शाम 5 बजे आज रात 8 बजे अंदोरा से होगा, लेकिन उससे पहले शाम 5 बजे ही एक पहला मैच खेला जाएगा लिचुआनिया और अजरबैजान के बीच। फिर रात 7 बजे सर्बिया वर्सेस नेदरलैंड रात 8 बजे और उसके बाद 11:15 10:45 PM पर निम्न मैच खेले जाएंगे। जर्मनी वर्सेस ग्रीस, इसराइल का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, फिर नॉर्वे का मुकाबला पोर्चुगल से, रात 8 बजे डेनमार्क वर्सेस वेल्स और ऑस्ट्रिया खेलेगा कोसोवो के विरुद्ध। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में भी आज और कल कई मैच आज खेले जाएंगे। आज और कल भी खेला गया। कल यूएसए की जीत हुई 4-1 से। आज सुबह कनाडा ने चिली को 1-0 से हराया। तो मेक्सिको और कोलंबिया ने मैच ड्रॉ किया 1-1। फुटबॉल में इतना सब कुछ। मैनचेस्टर सिटी अभी तक भारी असमंजस में है और उसकी कहानी अब बदलती हुई नज़र आने लगी है, क्योंकि पिछले कई सालों से उस पर फाइनेंशियल वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप साबित हुआ है। 115 में से 114 आरोप सामने आए हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि सिटी के चेयरमैन अध्यक्ष ने कहा कि ये एक प्रोसेस है, उन्हें पूरा विश्वास है कि टीम इससे भी बाहर निकल पाएगी, लेकिन बाकी सब का कहना है कि उन्हें मुआवजा भी चाहिए और सिटी को सारे टाइटल से उनको अलग रखना चाहिए और इसको लेकर बहुत सारी अफरा तफरी मची हुई है। क्रिकेट में आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच थिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में संपन्न होगा। तो फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के अजरबैजान ग्रां प्री रेस के पोल पोजीशन में आया कल रात मर्सिडीज का जॉर्ज रसेल, जो अपने साथी किमी एंटोनेली से जनरल स्टैंडिंग में 66 अंक अभी पीछे है। आज दिन के दौरान अजरबैजान ग्रां प्री लगने वाली है। और क्षेत्रीय स्तर पर मॉरिशस में कराटे में द इंडो पैसिफिक कप 2026 का आज आखिरी दिन है। कोडो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार से ही ये उच्च स्तरीय शोटोकान कराटे प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें मॉरिशस और जापान सहित विश्व के 24 देशों से कराटे खिलाड़ी एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। इनमें रेनियन टापू और रोड्रिग्स का भी एक डेलीगेशन है। जापान कराटे एसोसिएशन मॉरिशस द्वारा आयोजित इस शोटोकान कराटे प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए एंट्री फ्री है। आज सुबह 8:30 बजे से नोविस डिवीजन की बारी है। शामुनी में आज शाम 3:30 बजे एक गला मैच खेला जाएगा संडे मॉर्निंग स्टार्स और ग्रांबे कोरिंचांस के बीच। उल्लेखनीय है कि ग्रांबे कोरिंचांस वेटरन टीमों के बीच चैंपियन टीम है। तो पंपलेमुसेज जिला परिषद के सहयोग से आज दिन के 2 बजे से द गनर्स टीम आर्सेनल द सरसिस्वागराम गुलाम सुवेनिय कप आयोजित कर रही है। आज 2 मैच खेले जाएंगे, आर्सेनल एससी वर्सेस आर्सेनल वेटरन। तो पंपलेमुसेज एससी का मुकाबला रोजबॉ बोल्टन सिटी से है। दोनों मैच आर्सेनल फुटबॉल मैदान में खेले जाएंगे दिन के 2 बजे से। रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत इस आज 2 मैच खेले जाएंगे। आज 1 मैच होगा, कल 1 खेला गया। आज शाम स्पोर्टिंग बॉयज रिविया जोरापा का मुकाबला ओलंपिक कप मालोरे से है। और एक्वानिया लेगेसी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज ही खेला जाएगा। तेरूज रेंजर्स वर्सेस वेल FC 4 बजे एक्वानिया फुटबॉल मैदान में। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंटक्वा के निवासियों को सूचित करता है कि एलिपिया लावाल, इजोदो बुके, सेंट मारी ओपोंटर, ले कोनू और सेंट क्वा रोड में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लमाग के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोती जिफिल अकासिया 1, 2, 3, 4 और 5 में रू क्रेमाशियों, रू एराडन, रू साइप्रस, रू बेटो और आसपास की गलियों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 27 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। प्रेंदेजेसी और फ्लाक के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिल मोवी ओगेस, प्रेंदेजेसी, एसआईएमएस, लाक्यू, सीडब्ल्यूएआ और ईगल क्लिनिक इलाकों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 27 सितंबर को सुबह 8:15 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रोजिल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि एवेन्यू मद्रास, एवेन्यू रात सीतान के एक भाग में एवेन्यू क्रिटेन, एवेन्यू सीरियस, एनएचडीसी साइट एंड सर्विसेज और आसपास के इलाकों में कल सोमवार 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: सुबह के 7:15 बजे है। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। सुबह का ये नजराना होता है बहुत ही लाजवाब नजराना, बहुत ही पवित्र नजराना। इस सुबह की बेला में शांति का आभास होता है और इसमें जब हम चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं तो दिल को बड़ा आराम, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और इस सुबह की बेला में जो हमारे मन में महसूस होता है वो बहुत ही सुकूनदायक होता है। तो चलिए एक सुकूनदायक सुबह मिले आपको, यही हमारी उम्मीद है। आइए सुनते हैं आज का मंगल विचार कार्यक्रम डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।
2: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। एक राष्ट्र में एकता होना क्यों आवश्यक है? राष्ट्र में एकता की स्थापना कब और कैसे होती है, आइए विचार करें। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि देश और राष्ट्र के बीच क्या अंतर होता है। देश समुद्र, पहाड़, नदी आदि की सीमाओं से बंधा हुआ भूमि का एक टुकड़ा है। देश में रहने वाले लोग और लोगों के विचार, व्यवहार, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि का मिला जुला रूप राष्ट्र कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है और शरीर के भीतर आत्मा, उसी प्रकार देश शरीर है और राष्ट्र आत्मा है। देश में लोगों के जीने और रहने से ही राष्ट्र बनता है। लोगों का मिलजुल कर रहने से

से राष्ट्रीय एकता होती है। एकता में सुख है और अनेकता में दुख है। ऋग्वेद का आदेश है, समगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। हम सब एक साथ चलें, एक समान बोलें और हमारा मन एक हो, वही राष्ट्र उन्नत होता है, जहाँ एकता का महत्व समझा जाता है। एकता की भावना अगर लोगों के मन में न हो तो राष्ट्र प्राणहीन हो जाता है। एक समय सिकंदर भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवेश करके आक्रमण करने लगे थे। उस समय आचार्य चाणक्य तक्षशिला के नालंदा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। उन्होंने देखा कि सिकंदर के आक्रमण से भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था, राष्ट्र बिखर रहा था। यह देखने पर चाणक्य ने राष्ट्रीय एकता को बचाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाने की बजाय देश के राजाओं को शिक्षित करने का विचार किया। वे मगध के राजा घनानंद से मिलने गए और उन्होंने कहा कि सिकंदर के आक्रमणों को रोकने के लिए हमें आपकी सेना की आवश्यकता है। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य की सहायता करने की बजाय उन्हें अपमानित करते हुए कहा, तुम पंडित हो, पंडित की तरह केवल अपने सिर की चोटी का ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम्हारा काम पंडित का है, जाओ सिर्फ पंडिताई करो। राजा घनानंद ने अपने अहंकार में यह भी बता दिया कि दूसरे राज्य के राजा की हत्या करने में उन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। यह सुनकर आचार्य चाणक्य क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सिर की चोटी खोल दी और यह प्रतिज्ञा की कि विदेशी के हाथों अपने ही राष्ट्र के लोगों की हत्या कराने वाला राजा राष्ट्रद्रोही होता है और ऐसे राष्ट्रद्रोही का नाश जब तक वे नहीं करेंगे तब तक वे अपने सिर की चोटी नहीं बांधेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का सहारा लेकर राष्ट्रद्रोही घनानंद के वंश का नाश किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने विदेशियों को भारत से भगाया और अखंड भारत का निर्माण किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए आचार्य चाणक्य ने जो कार्य किया था वैसा ही कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनकी मान्यता थी कि आज़ादी अगर मिल भी जाए तो राष्ट्रीय एकता के अभाव में भारत का विकास नहीं हो पाएगा। इसी मान्यता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर छोटे बड़े राज्य को भारत में मिलाने का कार्य किया। वे सबसे पहले उड़ीसा गए और उन्होंने वहां के हरेक राजा से कहा, कुएं का मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। सरदार पटेल के निवेदन पर एक एक करके रियासतों के राजाओं ने भारत में अपना राज्य मिलाने की स्वीकृति दी। सरदार पटेल ने बिना खून बहाए 562 राज्यों को भारत में मिला दिया। इस चमत्कार पर महात्मा गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि उसे सिर्फ तुम ही हल कर सकते थे। श्रोताओ, राष्ट्र का एकीकरण वही कर सकता है जो फौलादी इरादे वाला होता है। राष्ट्र पुरुषों के व्यक्तित्व से सीखते हुए आइए हम अनेकता वाले देश में

0: एकता को बचाए रखने का संकल्प करें। रंग, रूप, रीति रिवाज, भाषा, पहनावे आदि से हम भले ही अलग हों, फिर भी मिलजुल कर प्रेम से रहें और राष्ट्र का मान बढ़ाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का ये नजराना है बहुत ही लाजवाब सा। इस नजराने में चलिए हम सुकून का आभास करें, हम सुकून महसूस करें। इस जहां में हमें रहना है तो डिटर्मिनेशन के साथ रहना है, इस जहां में अगर हमें रहना है तो पक्केपन के साथ रहना है, दृढ़ता हमारे जीवन में रहे ऐसी कामना रहे है हमारी ईश्वर से, और अपने पक्के विचारों या प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से जमे रहे आप, यही उम्मीद रखते हैं आपके लिए। मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी भी रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आप में आए, असफलताओं के बाद भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहने का जज्बा आप में आए, यही हमारी उम्मीद है। चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ हम एंटरटेनमेंट आपका करते हैं गानों के साथ। और प्यारा सा ये गाना जो हमने लिया है, बहुत ही मशहूर सा गाना, अपने ज़माने का इतना मशहूर गाना कि आपको वो ज़माना ज़रूर अपने जहन में महसूस होने लगेगा। चलिए ज़रा कयामत से कयामत मूवी का ये गाना अलका याग्निक, उदित नारायण और आपकी आवाज़ों में सुनते हैं।

चलिए जरा देखते हैं कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आप लोगों के लिए रेडियो मर्शस पर। और रेडियो मर्शस पर तो हमारी आपकी अभी मुलाकात हो रही है सुबह का नजराना शो में, और सुबह का नजराना सेगमेंट में अभी आप लोगों के मनोरंजन के साथ हम तो है ही है। 9 बजे भी आप लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे हम आपके संदेशों के साथ, यानी कि पैगाम आपके नाम प्रोग्राम के साथ। फिर 8 बजे से 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, और 9 बजे आप सुनिएगा आज का मंगलाचरण कार्यक्रम, जिसे आज सुनिएगा आज आप तमिल भाषा में गोविंदन के अवसर पर, और सुंदरम पेश करेंगे ये प्रोग्राम। फिलहाल चलिए ज़रा हम आगे बढ़ें, मंगलाचरण कार्यक्रम के बाद कौन सा प्रोग्राम होगा, इनफैक्ट 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप उर्दू कार्यक्रम निसार से सुन पाएंगे, और फिर 11 बजे सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम सुंदरम से, और 12 बजे आप सुनिएगा कृतिका की प्रस्तुति में आज का तेलुगु प्रोग्राम। शीर्ष लेकर आएंगे मराठी प्रोग्राम दिन के 1 बजे, और उसके बाद आप सुन पाएंगे आज का चाइनीज़ प्रोग्राम दिन के 2 बजे से 3:30 बजे तक। फिर 3:30 बजे आप सुनिएगा आज का रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में, जिसे लेकर आएंगी रत्ना, और 4 बजे आप सुनिएगा आप और हम कार्यक्रम पूजा से, और 5 से 6 बजे तक पूजा ही से सुनिएगा आज का दोहर पसीन कार्यक्रम। फिर 6 बजे समाचार बुलेटिन होगा, 6:30 बजे आप चाइनीज़ प्रोग्राम सुनिएगा डेविड से, और फिर आप सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम। तमिल प्रोग्राम आज कलेवानी से सुनिएगा रात्रि के 7 बजे, और 7:30 बजे वंदना से सुनिएगा आज का प्रोग्राम स्वरला वेदिका तेलुगु भाषा में। फिर 7:50 पर

गीत गंगा मराठी प्रोग्राम शीर्ष लेकर आएंगे। डॉक्टर अलका धनपत लेकर आएंगी आज का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रात्रि के 8:10 पर, और 8:40 पर समीर लेकर आएंगे आज का उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। फिर रात्रि के 9 से 11 बजे तक आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम होगा उषा की प्रस्तुति में, और फिर पुराने गानों का प्रोग्राम होगा आप लोगों के नाम, जो रात के 11 बजे से रात के 12 बजे तक चलेगा। तो ये प्रोग्राम आप गिनीशा की प्रस्तुति में सुनिएगा, और पुराने ज़माने की सैर इन गानों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो ये छोटा सा डिटेल आपके लिए रेडियो वर्सेस के कार्यक्रमों के बारे में। साथ देते रहिएगा रेडियो मॉरिशस है ये, और रेडियो मॉरिशस पर एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हो चला। आपके लिए पेश कर रहे हैं जवानी मूवी का ये गाना, और ये आशा भोसले अमित कुमार की आवाज़ों वाला गाना आप सभी श्रोताओं के नाम।

0: एनबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम मुझे क्या मालूम, आपका नाम क्या?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
3: कहता है बाबुल।
0: रविवार 27 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल। एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
4: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है।
4: 1 2 3
5: क्योंकि
0: सितंबर रविवार को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए चलिए जरा हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी छोटी सी है पर बड़ी गहरी सी है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल तक हम पानी बरसाएंगे ही नहीं। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने सारे हल वगैरह वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स थे वे पैक कर दिए और रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे तो किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल चलाता रहूंगा, कहीं मैं इन 10 सालों में हल चलाना न भूल जाऊं। यह सुनकर बादल घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। ये सोचकर वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक कर रखा था वो तो हाथ मलते ही रह गए। इस कहानी से यही बात तो हमें सीखने को मिलती है कि लगे रहो तुम, भले ही परिस्थिति अभी तुम्हारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निसंदेह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं भूलते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। होप की कहानी से कुछ सीखने को मिला। होप कहानी अच्छी लगी आपको। 7:50 हुए हैं। चलिए सुनते हैं जरा रोमांस मूवी का ये गाना।

आज संडे है, संडे आता है कुछ लोगों के लिए आराम देने के लिए, कुछ लोगों के लिए वीकडेज में जो नहीं हो पाता वो काम पूरा करने के लिए, कुछ लोगों का संडे भी वीकडेज की तरह रूटीन जैसा गुजरता है, तो कुछ लोग बेशक संडे को सैर सपाटा डे बना देते हैं। तो जिस भी सिचुएशन में हो आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और संडे का हो या किसी भी दिन का हो आप फ़ायदा ज़रूर उठाते चलिएगा। आपके लिए पेश कर रहे हैं हम इस बार रॉकी मूवी का गाना, और ये गाना सुनते सुनते गुनगुनाते गुनगुनाते हम पहुँचेंगे भोजपुरी समाचारों की ओर। भोजपुरी समाचार लेकर करुण आएंगी और उसके बाद हम मिलेंगे पैगाम आपके नाम शो में।

फजीर के आठ बजल बा पेश पाते भोजपुरी समाचार। सब लोगन के नमस्ते। MMM बीतल कल, आज और आय हुला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुनल गलबा MMM के 57वां स्थापना दिवस खातिर, जिनकी आज दिमास के 27 सितंबर के गेजवी में मनावल जाए। मॉरिशस के राजनीतिक इतिहास में MMM के महत्वपूर्ण भूमिका रहल बाते। ई देश की वो राजनीतिक पार्टी में से एगो है जिनकी 60-0 के चुनावी जीत से जुड़ल रहल बा। एकर में सबसे हालिया जीत नवंबर 2024 में होल रहल। 57 बरिस के दौरान MMM उतार चढ़ाव भी देखले बा, जेकर में कई गो नेता और सदस्य के पार्टी से अलग होय के और नवा सदस्य के जुड़े के शामिल बाते। दरअसल ई पार्टी के जन्म ऐसन राजनीतिक माहौल में होल रहल जब छात्र कार्यकर्ता के लामबंदी भी प्रमुख रहल। उस समय पार्टी के कार्यकर्ता मॉरिशस के गो बेहतर द्वीप बनाए खातिर नवा विचार और मुद्दा संगे आवत रहलन जा। ये विचार आज भी प्रासंगिक बाती। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव देखे के मिली। कहे कि दुगो शैक्षणिक संस्थान के जो सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त हुएला उस समाप्त कर देवल जाए। इकर चलते छात्र और कर्मचारी के नवा व्यवस्था खातिर तैयार रहे के चाहिए। छात्र के पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करे के और प्रभावित कर्मचारी के फिर से तैनात करे खातिर उपाय भी चाहेला। लेखा के प्रभावित करे होला बुराई से निपटे खातिर रचनात्मकता और एगो साधन के रूप में इस्तेमाल करल जाबा। राइस प्लस कार्यक्रम काल्फिनिक्स रोटरी क्लब द्वारा काठोबोन में स्थित हरिलाल चुरुमुनी गवर्नमेंट स्कूल में पायलट आधार

हार पर शुरू करल गल। तीन बरिस खातिर चरणबद्ध तरीका से लागू करल जाए होला और परिणाम के आधार पर मापल जाए होला कार्यक्रम है, जेकर उद्देश्य स्कूल में नशीली दवा से जुड़ल समस्या से निपटे के है। महोवाकुआ के जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिरे सके।

35.5% तक भरल बा और यदि द्वीप के हिस्सा में भारी बारिश नहीं हुई तो CWA चेतावनी देले बा कि वो प्लेनविलहेम्स मोका और गिवियनवा के एगो हिस्सा में पानी के आपूर्ति खातिर हैजा से और पानी नहीं ले सके। स्थिति में काफी अंतर देखे के मिलता 17 सितंबर 2025 के महोवाकवा के जलस्तर 93.1% रहल जबकि ई बरिश के यही अवधि के 39.9% दर्ज करल गल बा। CWA कहता कि पानी के अतिरिक्त स्रोत के तलाश भी करल जान बा। CWA स्पष्ट कर ले बा यदि स्थिति और बिगड़ी त नवा उपाय से इनकार नहीं करल जा सकी। कुछ क्षेत्र में 17 जून से ही पानी के आपूर्ति के समय में कटौती करल गल बा जबकि देश के बाकी हिस्सा में 5 अगस्त से प्रतिदिन 2 घंटा के कटौती लागू बाते। पानी के पिए के पानी के कुछ उपाय पर लगल पाबंदी भी 30 नवंबर तक लागू रहे। आज 27 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गल बा जिनकी 10 अक्टूबर तक चली। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है जेकर दौरान लोग अपन पितर के याद करेलन जा, उ लोग के तृप्ति खातिर तर्पण करेलन जा, उ लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करेलन जा। स्वतंत्रता से वंचित हो के बदलाव के इच्छा छोड़ दे के नहीं हा। यही संदेश वी आर पावरफुल नामक गीत के माध्यम से देवल गलबा जिकरा महिला कैदी लोग मिल के तैयार कर ले हवन जा। ये पहल NGO कॉप जेम के है। एक तहत संगीत और आर्ट थेरापी कार्यक्रम चलावल जानबा जिकर उद्देश्य ये कैद महिला लोग के पुनर्वास के बढ़ावा देवे की है। दूसरे देश के समाचार में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र चलल बाते। इस संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस के कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकट, संघर्ष, महामारी, जलवायु परिवर्तन, आपदा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरल रहल बा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र के अध्यक्ष चुनल गल बा। उनवा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन के प्रक्रिया के देख रेख भी करियन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN के महासभा के संबोधित नहीं करे गयलन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरा होला पर भी एकर में शरीक नहीं होलन। और अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सा में कई मिलियन लोग एगो शक्तिशाली तूफान के चपेट में आए होला क्षेत्र में हवन जा जेकर कारण तटीय इलाका में बाढ़, बिजली कटौती, यातायात में अव्यवस्था और स्टेडियम में होई होला कार्यक्रम के रद्द होई के स्थिति पैदा हो गल बा। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन समेत कई गो इलाका में खतरनाक तटीय बाढ़ और समुद्री तट पर जोखिमपूर्ण परिस्थिति, तेज हवा और भारी बारिश होई के आशंका बाते। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी दोनों राज्य में आपातकाल घोषित कर देवल गल बा। इन दोनों राज्य के कुछ इलाका में अक्ते से ही तटीय जल भराव देखे के मिले सकी। एकरे संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। एकर प्रसारण यूसुफ के सहयोग से करल जान बा। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। आठ बज के 7 मिनट हो गल बा। शोक समाचार सुना जा। कालीमाई गली बाउलू में 49 बरिस के काहौतने वों के श्री उमाशंकर मौगौ जिनकरा लोग विशाल से जानत रहन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी लंडी के दिन के 10 बजे इनकर माँ श्रीमती ललिता मौगौ के मकान कालीमाई गली बाउलू से उठा के दाह संस्कार खातिर बाउलू के ही शमशान भूमि ले जल जाए। ओडबासें काथोबोन में 85 बरिस के काथोवैसैकों के श्री जसमनदेव नक्चेदी
जिनकी अख्तियार और शिस्ते लेकुम के कर्मचारी

सारे रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा दिनेश कुमार नकचेदी के मकान गुडबासे काठोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। मोसलमा और तेलम फॉरेस्ट साइड में 84 बरिस के काथोवें कथाओं के श्री तानाजी लक्ष्मण, श्री तानाजी लक्ष्मण जिनकरा लोग ताजोमी से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज फजर के 9:30 इनकर पत्नी श्रीमती ईश्वंती लक्ष्मण के मकान मोसलमा और तेलमा फॉरेस्ट साइड से उठा के दाह संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जाल जाए। योंग टाउ रोड गाँव बुआ में 54 बरिस के सेकंड काथाओं के श्री अजय सिबारत, श्री अजय सिबारत जिनकरा लोग लोलो से जानत रलंजा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10:30 इनकर मकान योंग टाउ रोड गाँव बुआ से उठा के दाह संस्कार खातिर गाँव बुआ के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। लाफोज लेन पालमा काथोबोन में 70 बरिस के संजीजों के श्री ताहाल जैनोत, श्री ताहाल जैनोत जिनकरा लोग राम से जानत रहलन जा और जिनकी अक्ते पुलिस कापोरल रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी का लेंदी के दिन के 10 बजे इनकर मकान लाफोज लेन पालमा काथोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा काथोबोन के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड डेनिंगाम थ्रियोले में 36 बरिस के 36 के जनाब मुजाफर नूर सिंह, जनाब मुसाफर नूर सिंह जिनकरा लोग जफर से जानत रलिंजा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनकर मकान रॉयल रोड डेनिंगाम थ्रियोले से निकाल के दफनावे खातिर बुआ मौशों के कब्रिस्तान ले जाल जाए। मोसलमा पोणाओजे में 70 बरिस के स्वासंजीजों के श्री ज्ञानचंद सुकना, श्री ज्ञानचंद सुकना जिनकरा लोग भयवा से जानत रलन जा और जिनकी अक्ते इजीदोगोज रहत रलन, इजीदोगोज फ्लाक रहत रलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर पत्नी श्रीमती देवयानी सुकना के मकान मोसलमा पोणाओजे से उठा के दाह संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। पारिजोलेन मेनिल में 77 बरिस के स्वासंजीसेतों के बीबी फेरोज पीरू पैदाइशी नाम श्रीनिवास जिनकर इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 10:30 इनकर मकान पारिजोलेन मेनिल से निकाल के दफनाए खातिर, बल्कि दफनाए सकते हनाफी मस्जिद ले जाल जाए, फिर दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रिस्तान। न्यू रोड कालचिमलीतेया में 71 बरिस के स्वासंतेओं के श्री सुशर्मा महादू, श्री सुशर्मा महादू जिनकरा लोग जैक ऑंसियन फैक्टर से जानत रलिंजा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनकर पत्नी श्रीमती मीरा महादू के मकान न्यू रोड कौचिमलीते से उठा के दाह संस्कार खातिर सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर के शमशान भूमि ले जाल जाए। और स्कूलेन मेलरोज में 73 बरिस के 63 के श्री किशोर साहू मोती जिनकरा लोग किशोर से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी श्रीमती रत्ना मोटी के मकान स्कूल लेन मेलगो से उठा के दाह संस्कार खातिर मोटाई ब्लाउश के शमशान भूमि ले जाल जाए। द शोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के गहरा सहानुभूति बातें।

सो इस समय 8:14 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मर्शिस पर. रेडियो मर्शिस पर आप लोगों का साथ देते हुए दिल बेहद खुश है, दिल बेहद प्रभावित है आपके साथ से. तो चलिए ज़रा हमारा आपका साथ जो है इसे प्यारा सा बनाते हैं, इसे लाजवाब सा बनाते हैं आपके मैसेजेस के ज़रिए. ये है पैगाम आपके नाम प्रोग्राम, और पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आप अपने अपनों के नाम वो मैसेजेस भेजें जो आपके मन में हिचको लिखा रहा है. कोई भी इवेंट हो आपके परिवार में या फिर आपके दोस्तों के बीच में, उस इवेंट के लिए आप अपने अपनों को कोई संदेश भेजना चाहते हो तो आप हमें मैसेजेस द्वारा भेज सकते हैं 5251705 पर, या फिर आप हमें कॉल के ज़रिए बता सकते हैं 4028085 पर. तो जो भी माध्यम आप अपनाएं हमारे इस प्रोग्राम की शान ज़रूर बढ़ाएं. चलिए ज़रा हम अपने उन श्रोताओं के नाम लेते हैं जिन्होंने हमारा साथ बहुत ही शुरुआत से दिया है, सुबह के 6 से दिया है, जिनमें देवी जी शामिल हैं, जिसमें सुनीता जी शामिल हैं, सूरज शर्मा सजादा जी जो थ्रियोले के रहने वाले हैं उनका नाम शामिल है, अनीता जी जो मदल बेर रहती हैं वे हमारा साथ दे रही हैं, फिर हैं सुनीता जी जो दागुचिया की रहने वाली हैं, सुदेवी जी वाकवा से, विश्वानी दुमन जी. तो चलिए इन सब का नाम हम थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर लेंगे और हमारे इस शो में आप सबों के मैसेजेस पढ़ेंगे. तो चलिए फ़िलहाल हम वो गाना पेश करते हैं जिसका सपना हर कोई देखता है और ये सपना सबका साकार हो, हमारे मन में ये दुआएं बसती हैं.

तो बस हर किसी का सपना पूरा हो, हर किसी ने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब में के लिए दृढ़ मेहनत कर रहा हो, यही हमारी उम्मीद है। और बस आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं विश्वानी दुमन जी की जी का मैसेज। विश्वानी दुमन जी का ये कहना है कि वे आज संडे को उन सभी लोगों को मंगल कामनाएं दे रही हैं जो अकेले हैं, हॉस्पिटल में हैं, और जो लोग जिन लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं है। बस उम्मीद यही है कि कोई ना कोई साथ देने वाला हो हर किसी का, और इस जहां में खुशियों के पल हर किसी को नसीब हो। तो इस दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विश्वानी दुमन जी। चलिए जरा हम माला सुमाहो जी का मैसेज पढ़ते हैं। माला सुमाहो जी ने हमारा भी स्वागत किया है और आपका भी स्वागत किया है, बहुत बहुत शुक्रिया माला जी। और माला जी का कहना है कि आज कनाडा में उनके बेटे कृष्ण सुमाहो का जन्मदिन है, और सो उनको मंगल कामनाएं पत्नी जान की तरफ से, दो बेटों की तरफ से मिलान और शैलान की तरफ से, तीन भाई उत्तम, सुयश

और शिरवान उन्हें मंगल कामनाएं दे रहे हैं। कैथोबोन से पापा सूर्यदेव, मामा माला तथा सभी इस सुमाहो परिवार उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्ण सुमाहो जी। हमारी पूरी टीम आपको मंगल कामनाएं देती है।

और मंगल कामनाओं का गुलदस्ता हम प्रकट करते हैं सविता पदारथ जी को। नुवेल दे कुवैत की बहन सविता पदारथ जी को माला सुमाहू जी मंगल कामनाएं दे रही हैं उनके 60th बर्थडे के अवसर पर, और उन्हें ढेर सारा प्यार, ढेर सारे विशेस और ढेर सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सविता पदारथ जी।

ये है आपके लिए पैगाम आपके नाम, और पैगाम आपके नाम मतलब आपके अपनों के नाम। आप जहां भी होंगे आपके अपनों के नाम जरूर पैगाम भेजा कीजिएगा। पैगामों के गुलदस्ते में शामिल है सुनीता बिहारी जी का पैगाम। सुनीता जी का कहना है, सुनीता जी जुद्दा गुच्छिया रहती है, उनका कहना है शुभ रविवार हमारे सभी श्रोताओं को और जितने भी छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से शुभकामना है, भगवान आप सभी को सफलता दे। ऐसा कहना है सुनीता जी का जो कि रहती है दागोचिया। सुनीता जी संदीप प्रिया और श्रवण की ओर से ये दुआएं करती है कि हर छात्र के मन में लगन रहे, हर छात्र के मन में ठहराव रहे ताकि वे अपनी परीक्षा में सफल हो जाए। और इधर सुदेवी जी की फरमाइश है कि हम उनके परिवार में जन्मदिन की जो खुशी है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। आज मालेगा की भौजी बबीता का है जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू बबीता जी, आपको मंगल कामनाएं। पति अमित की तरफ से बेटी गेशना, रेशिका, बेटी कमलेश, ऋषि, आश्विन, प्रवीण, भैया अमृत, मुनिराज, गुतनी, राधा, ललिता की तरफ से, सभी नीसेस एंड नेफ्यूज की तरफ से, जीवलाल परिवार, रामरतन परिवार, कुवाहो परिवार और गुरदयाल परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से मंगल कामना।

और इधर हम एक माता जी को प्रणाम करते हुए उनके नाम का मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज उनके बच्चों की तरफ से है, दुनिया की बेस्ट मम अनीता रामजीतन के नाम, जो फोंदिसाक रहती है। बहुत बहुत खुशियों की दुआएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमेशा अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचने वाली माता को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके बच्चों की तरफ से। ईश्वर से बच्चों ने प्रार्थना की है कि वे हमेशा स्वस्थ रहें। उनके बच्चे हैं बेटी करिश्मा, दामाद कुमार, उनकी नातिन अरवी और नाती आर्या, फिर नाती नातिन में शामिल है अंश, शैना, शनाया, आहना, कैशा, अर्णव, रेहान, सिबालक परिवार, गुरगुबर और रामजीतन परिवार, गुलाम, झगरू और जोरिम परिवार। तो मंगल कामनाएं माता जी को। माता जी का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रहे। उनकी फैमिली बहुत ही प्यार से जिए।

फैमिली के बीच सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमेशा रहे प्यार, मोहब्बत, अपनापन, एक दूसरे का सपोर्ट। तो चलिए हम आपके नाम करते हैं वो गाना जो आपके बच्चों की तरफ से आपके नाम है और जो आपके बच्चों के मन में है वो बातें इस गाने में है।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना लेकर आया है पैगाम आपके नाम। पैगाम आपके नाम इसलिए पेश करते हैं क्योंकि हर एक पैगाम में बहुत सारा प्यार भरा होता है, बहुत ही गहराई भरी होती है। सो हर पैगाम पढ़ते वक्त हमारा दिल बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। और आप लोगों को मंगल कामनाएं भेजने वालों के दिल में जो मोहब्बत होती है उससे इम्प्रेस हर कोई हो जाता है। चलिए ज़रा हम अविनाश जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अविनाश जी, आपकी पत्नी निष्ठा की तरफ से, बेटे आयान की तरफ से और पूरे चिनातो परिवार और जगी परिवार की तरफ से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से अविनाश।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम भेज रहे हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से तिया भिखारी जी के नाम, तिया भिखारी जी जो अपना जन्मदिन जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, और साथ ही साथ तिया भिखारी और यश जी प्लेंडे पापाई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना एंगेजमेंट बनाया। सो तिया भिखारी और यश को मंगल कामनाएं पूरी टीम की तरफ से और उनके पूरे परिवार की तरफ से। तिया भिखारी और दामाद यश को मंगल कामनाओं का गुलदस्ता भेजा है ममा कामनीता ने, पापा विजय ने, उनके भाई रोशन ने, आंटी अनीता और मीता ने, फिर आंटीज़ हैं और बहुत सारी, सभी ने उनको मंगल कामनाएं और आशीर्वाद भेजा है नानी की तरफ से, अंकल्स की तरफ से, कजिन्स की तरफ से और उनके दोस्तों की तरफ से, भिखारी परिवार की तरफ से, परबोतिया परिवार, धनु परिवार की तरफ से एंड बेशक हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपका जीवन बहुत मंगलमय रहे यश और तिया जी, आप लोगों को खुशियां ही खुशियां मिले, हर कदम पे एक नई खुशी अवश्य मिले, हर कदम पे अपने साथी का साथ और सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, ये हमारी आप लोगों के लिए दुआएँ हैं। इधर एक पापा जी हैं जिनको बहुत सारा प्यार, उनकी

के बच्चों की तरफ से मिली है। पापा को बहुत सारा दुलार भेजा है प्यारे बच्चों ने, वर्ल्ड्स बेस्ट पापा कह रहे हैं उनको, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड कह रहे हैं अरुण जी को, गाव्या और गर्वीर, साथ ही साथ उनकी पत्नी करिश्मा जी उन्हें बहुत सारा प्यार भेज रही हैं। 10 साल बाद पापा बने हैं, सो बहुत ही खुश खुश हैं, बहुत ही फूले फूले से हैं पापा जी।

तो चलिए मैसेजेस का ये सिलसिला जारी है और मैसेज हम पढ़ेंगे अभी श्वेता के लिए। श्वेता जी के नाम करते हैं हम ये गाना। और श्वेता जी हैं कहाँ से, चलिए ज़रा पढ़ते हैं आपके लिए। जी हाँ, पूनम की तरफ से शैलेश उनके पापा है, उनकी तरफ से ममा राधा की तरफ उनके माफ़ कीजिएगा, पूनम की तरफ से, शैलेश की तरफ से, डैड राधन की तरफ से, मम अनीता की तरफ से, जीहान, सानिया और लक्ष्य शैवी की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, खुशियों की दुआएं और बहुत अच्छी सेहत की दुआएं हम देते हैं श्वेता जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और मंगल कामनाएं हम देते हैं प्रिया असगर जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिया जी. आपके हस्बैंड विशाल जी की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से सियान यवनीश, आपके पेरेंट्स की तरफ से और साथ ही साथ पूरे असगर परिवार की तरफ से और शैलेश की तरफ से तथा मीरा तिलक की तरफ से. A very, very happy birthday to you, हमारी पूरी टीम की तरफ से प्रिया असगर जी.

और इस बार पढ़ेंगे हम एक मैसेज एक भैया के नाम, और ये भैया है फोंदुसा के भाई रोशन राज जी, रामजीतन जी को बहुत सारी खुशियों की दुआएं, बहुत अच्छी सेहत की दुआएं दे रहा है पूरा परिवार, और पूरे परिवार की तरफ से ये दुआ है कि उनकी सेहत जो अभी ठीक नहीं है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहन दिया की तरफ से, रुखसार की तरफ से, मामा यास्मीन, पापा राजन की तरफ से, और भैया निशाल की तरफ से, तथा काला सीना अलीबक्स परिवार और प्लेंटी पापा के रामजीतन परिवार की तरफ, अलीबक्स परिवार जो प्लेंटी पापा के रहने वाले हैं, और फोंदुसा के रामजीतन परिवार की तरफ से बहुत सारी दुआएं भैया रोशन राज को, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये दुआ है कि फूलों की तरह सजता रहे उनका जीवन, और हर खुशबू की तरह उनके जीवन में हमेशा खुशबू आया करे। और ये गाना हम उनके नाम करते हैं क्योंकि उनकी बहनों का यही कहना है कि फूलों का, तारों का, सबका भी ये कहना है कि एक हज़ारों में हमारे रोशन भैया हैं।

तो बस थोड़ी ही देर में बहनों आपकी पसंद का गाना हम पेश करेंगे आपके भैया के नाम। लेकिन फिलहाल तो चलिए ज़रा हम ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं और ढूंढ के निकालेंगे हम वो गाना जिसकी फरमाइश आप अपने भैया के लिए कर रहे हैं इस वक्त।

बस यहाँ पर हम विश करेंगे हमारे कुछ श्रोताओं को और भी प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ। भतीजे सेनीलान चेंगाडू को 24 को विश कर रहे हैं, 24 को जन्मदिन मनाया उन्होंने, उनके बर्थडे के अवसर पर पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएँ अनीता जी ने फ्लिकॉन फ्लैग से भेजी हैं। सो अनीता जी के भतीजे से नीलान चिंगाडू जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएँ। और जन्मदिन की बधाई यहाँ देख रहे हो के पति देवानंद जी को भेज

जी है, उनकी पत्नी ने पूरे जीवन परिवार की तरफ से बेटे नीतीश, कुशल, करण, बेटियों अनुषा, मनशा, दामाद सतीश, बहू कवीना की तरफ से संहिता की तरफ से नाती नातिन जिया, तेजल, गौरव, क्रियानस और सबसे छोटा लड्डू गोपाल तस्वीक की तरफ से, जीवन परिवार की तरफ से, पुराहु परिवार की तरफ से और गिव्या दी क्रियोल तथा मोदाल बे यूनियन पॉक लाखोजा के पूरे परिवार की तरफ से देवानंद जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा हमारा आपका साथ पैगाम आपके नाम प्रोग्राम के ज़रिए। पैगामों का ये सिलसिला बड़ा प्यारा आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी संडे, बहुत अच्छा दिन रहे आपका, शुभ दिन, नमस्कार।

0: सुबह के ठीक 9 बजे हैं, देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। एमएमएम बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के लिए, जो कि इस रविवार 27 सितंबर को रिजवी में मनाया जाएगा। बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए रचनात्मकता को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना, यही उद्देश्य है राइज प्लस कार्यक्रम का, जो फिनिक्स रोटरी क्लब द्वारा काठोबोन में शुरू किया गया है। माहोवाकवा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है। आज से पितृपक्ष शुरू हुआ है, लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि की जाएंगी। विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस का अंतिम महासभा सत्र है। गुटेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर से भरा रहा, और ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए होमुज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। न्यू रोड कौचमिलिते में 71 साल की 71-year-old श्री सुशर्मा महादू, जो जैक ऑंसियन फैक्टर से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती मीरा महादू के मकान न्यू रोड कौचमिलिते से उठाकर दाह संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और स्कूल लेन मेलरोज में 73 साल के 73-year-old श्री किशोर साहू मोती जो किशोर से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रत्ना मोती के मकान स्कूल लेन मेलरोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लाउस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। करुणा जी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। MMM बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही विषय चुना गया है MMM के 57वें स्थापना दिवस के अवसर के लिए, जो इस रविवार 27 सितंबर को गिजू में मनाया जा रहा है। कल सैमालो बेजिटोंबो में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई। शाम करीब 5:35 पर रॉयल रोड पर सैमालो फुटबॉल मैदान के पास एक मोटरसाइकिल कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। मोटरसाइकिल चला रहे 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जनवरी 2027 से सेंट बार्थोलोम्यूज कॉलेज और रॉयल होलोवे कॉलेज को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ये निर्णय प्राइवेट सेकेंडरी एजुकेशन अथॉरिटी के निदेशक मंडल ने लिया है। इसका कारण ये है कि दोनों कॉलेजों में छात्रों की आवश्यक न्यूनतम संख्या नहीं रही। अगले साल से संबद्ध छात्रों को उनके निवास स्थान के नज़दीक स्थित अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। उनकी पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। दोनों कॉलेजों के स्थायी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मॉरिशस एजुकेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि मेटको में शामिल किया जाएगा। विदेश में ईरान ने कहा कि वह अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाजों के लिए होमोज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ट्रंप की अस्वीकृति का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर पहले विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि तेहरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान तत्काल होमोज जलमार्ग को खोलने के लिए समझौता करना चाहता है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह नुकसान हो रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

वबरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आप उर्दू प्रोग्राम बज़्मे अकीदत समात कर रहे हैं। निसार अख्तर आपको खुश आमदीद कहता है। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स ज़माने से उठा।

सदियों तक फजा में घुलती रहती हैं। आज की महफिल उन्हीं खुशबुओं से महकने के लिए सजी है। आज हम खैराज अकीदत, खैराज तहसीन पेश करेंगे उस जैयद आलिम दीन, अजीम बुजुर्ग, शान अहले सुन्नत, ज़बरदस्त आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी वफात, जिनका वसाल इस माह मुबारक की 17 तारीख को हुआ था। हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद शमीम अशरफ अजहरी अलैहि रहमा, एक ऐसा नाम जिसके साथ एहतराम खुद ब खुद जुड़ जाता है, एक ऐसा दिल जो तबलीग दीन के लिए धड़कता रहा। सामईन, उम्मीद है आप आखिर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, हमारे हमरा बनेंगे। आइए हसब मामूल मजलिस का बाकायदा आगाज सूरा मुल्क की तिलावत से करते हैं। बागौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन इकराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। सरजमीन मॉरिशस में जिन बुजुर्गान दीन के फैज़ कुदूम से शमग़ इस्लाम फरोज़ा हुई, उन मुस्तनद हस्तियों में हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अशरफ अजहरी रहमतुल्लाली की ज़ाते बाबरकत हैं। आप रहमतुल्लाली एक मुमताज़ आलिम दीन, एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुहूद व तक्वा के पैकर और रूहानी शख्सियत के मालिक थे। आप रहमतुल्लाली की ज़ात में नेकी की दावत और इशात इल्मदीन का जज्बा भरा हुआ था। आपकी दीनी खिदमात का एतराफ़ अवाम खास के हर तबके ने किया है। आप रहमतुल्लाली ने अपनी पूरी ज़िंदगी खूब मेहनत व अकीदत के साथ इल्मदीन का काम सर अंजाम दिया। दरअसल मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाली की विलादत बासादत उनकी पैदाइश हिंदुस्तान के एक मजहबी घराने में हुई थी। बिलयकीन ये उस घराने की बरकत थी जिसकी बदौलत आप जमात अहले सुन्नत के वो हसीन गुलाब बने जिसकी महक आज तक पूरे मॉरिशस को मुअत्तर करती आ रही है।

मोहतरम सामईन, ये हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अज़हरी रहमतुल्लाही की खुशबख्ती थी, उनकी खुश नसीबी थी कि आपने अपनी हयात, अपनी ज़िंदगी में दो मरतबा दीन इस्लाम के अलमबरदार कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाही की ज़ियारत का शर्फ पाया, और उन्हीं के कहने पर आप रहमतुल्लाही ने मॉरिशस का रुख किया। दरअसल आप रहमतुल्लाही को मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाही से ख़ास मोहब्बत अकीदत थी। पहली मरतबा मौलाना शमीम अज़हरी रहमतुल्लाही की मुलाकात उनसे बम्बई की एक मस्जिद में हुई थी, और दूसरी मरतबा आप लोगों की मुलाकात यहाँ मॉरिशस में यौमुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुई थी। हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अज़हरी रहमतुल्लाही को मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाही से इतना लगाव था कि सन 2003 में जब उनका इंतकाल हुआ तो मौलाना शमीम अज़हरी रहमतुल्लाही बेहद रंजीदा हुए।

मोहतरम सामईन, सन 1982 में अहले मॉरिशस का सितारा चमका और हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अजहरी रहमतुल्लाह ने सरजमीन मॉरिशस में पहला कदम रखा और यहीं पर अपनी ज़िंदगी के तमाम अय्याम गुजार दिए। आप रहमतुल्लाह 22 साल तक यानी 22 ईयर्स तक पोर्टलुई के जामा मस्जिद के खतीब की हैसियत से काम करते रहे, जहां मुल्क के गोशे गोशे से लोग वायज़ो नसीहत से मुस्तफीज होते रहे। आखिरकार पैरों में कमज़ोरी होने की वजह से वो सुबुकदोश हुए, वो रिटायर्ड हो गए, मगर मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाह आखिरी सांस तक दीन इस्लाम का पैगाम फैलाते रहे।

0: मोहतरम सामईन, मौलाना मोहम्मद शमीम अजहरी रहमतुल्लाही की तकारीर हमेशा बुलंदोबाला होती और आपका अंदाज नहायत मुनफरिद होता। आप रहमतुल्लाही के ताज़ा तरीन बयानात समाजी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए करते थे। आप अपने हर बयान का आगाज आला हजरत रहमतुल्लाही के दो अशार से करके अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते, और ये बात काबिल तारीफ है और कि जिस शानदार अंदाज से आप रहमतुल्लाही अशार पढ़ते, सुनने वाला बिलाशुबा महजूज होता। मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाही का एक मामूल था कि आप जब भी उर्दू में तकरीर फरमाते तो उसी का अरबी तर्जुमा खुतबे में बयान फरमाते। चुनांचे मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाही अपनी बातों के जरिए हमेशा लोगों को मौत के बारे में खबरदार करते रहे। आप रहमतुल्लाही के बयानात इल्म व हिकमत के वो मोती हैं जिसे सुनने वाला अपने दामन में समेट कर ले जाता। सामईन, एक मरतबा 11वीं शरीफ के खास मौके पर मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाही ने एक खताब फरमाया था। आइए उस बयान को दोबारा समाअत करने का शर्फ हासिल करें, उनकी आवाज़ को दोबारा अपने कानों में महसूस करते हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत कीजिए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी हिजरी साल का चौथा महीना रबीउस सानी 11वीं शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रबीउस सानी जो अब चल रहा है, इसमें ऐसे तो तमाम नेकियों अच्छाइयों का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र, रसूल का जिक्र, दीन इस्लाम की बातों का जिक्र, वलियों का जिक्र, ख़ास कर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ की याद ताज़ा की जाती। अब एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमको आपको दिन दिया, रात दिया, महीना दिया, ये सब इसलिए दिया कि हम अल्लाह के ज़िक्र को बढ़ाएं करें, घर में, ऑफिस में, मस्जिद में, जहां मौका मिल जाए वहां पर अल्लाह और रसूल का ज़िक्र किया जाए। तो ये जो अल्लाह का ज़िक्र है, ये दिलों को साफ़ करता है, धो देता है, गंदगी ख़त्म कर देता है, काला

दूर कर देता है। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अल्लाह के एक वली हैं। रमज़ान की पहली तारीख को पैदा हुए और आप नजीबुत्तरफ़ैन हैं, माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, नाना की तरफ से भी उनके हिस्से में वहाबी विलायत भी मिली। हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहली रमज़ान को पैदा हुए। फिर जब उम्र थोड़ी हुई तो उस्ताद के पास वालिद साहब लेकर गए, जो आज हम लोग भूल चुके हैं। एनिवर्सरी तो मनाते हैं हम, मगर इन बातों को हम भूल गए कि जिन बातों को हमारे बुज़ुर्ग मनाते थे वो क्या मनाते थे। वो बिस्मिल्लाह खानी कराते थे बच्चे की, यानी बच्चा जब कुछ बोलने के लायक हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो उस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए किसी बुज़ुर्ग, नाना, दादा, चाचा, मामू या इमाम साहब के पास लाते थे और वो लोग इस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा देते थे। उसको बोलते थे बिस्मिल्लाह खानी, यानी जो बोली निकले उसकी पहली वो अल्लाह के नाम की निकले। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के वालिद भी उनको एक बुज़ुर्ग के पास लेकर आए। बुज़ुर्ग ने उनसे कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा शुरू कराया। उसके बाद अब्दुल क़ादिर जीलानी पढ़ते ही जा रहे हैं, अलिफ लाम मीम शुरू कर दिया। उस्ताद मुँह देखने लगे, उनके वालिद का चेहरा देखने लगे, या अल्लाह इस बच्चे को तो पढ़ा लिखा कर लाए हैं ये, अब मैं क्या इसकी बिस्मिल्लाह खानी कराऊँ। तो उन्होंने वालिद से कहा हुजूर आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम वली हैं, आपने इसको सिखा दिया फिर मेरे पास लेकर आए, का पूछिए इसी से। तो अब्दुल क़ादिर जीलानी का जवाब सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इस जवाब की बरकतें लाने की कोशिश कीजिए। अब्दुल क़ादिर जीलानी ने क्या कहा, उस्ताद अब्बा ने नहीं सिखाया मुझको, अब्बा ने नहीं पढ़ाया, मैं जब माँ के पेट में था तो माँ जितने सिपारों की तिलावत किया करती थी अल्लाह ने अपने रहम व करम से मुझको सब सिपारे ज़ुबानी याद करा दिए, मैं हाफिज़े क़ुरान हो गया माँ की तिलावत की बरकत से। तो उस्ताद ने कहा बेशक क़ुरान की ये बरकत है कि माँ जब तिलावत करती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। ये हमारी माँ बहनों के लिए कितना बड़ा सबक है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, हमारा बच्चा नेक हो, हमारा बच्चा वली हो, हमारा बच्चा अल्लाह वाला हो, तो हमको जब बच्चा पेट में है उस वक्त से ही बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां गुनाह होते हैं, ऐसे लोगों से ना मिलें जहां जो गुनाह में डूबे हुए हैं, बल्कि अल्लाह वालों से मिलें, अल्लाह वालों की बात करें, अल्लाह वालों का चर्चा करें, अल्लाह वालों का जिक्र करें। जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े बैठे करवट पर लेटे, इस एतबार से भी गौसे पाक की ज़िंदगी देखिए क़ुरान मुक़द्दस के मुताबिक। फिर एक जगह अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। क़यामत के दिन यह सच्चाई ही काम देगी, यौम यन्फ़ुस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम। अल्लाह ने फरमाया कि यह है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका सच काम आएगा। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़बान की सच्चाई, नीयत की सच्चाई, इरादे की सच्चाई, ख्यालात की तकमील तक पहुंचाने की सच्चाई, अमल में सच्चाई, दीनी कामों में सच्चाई, यही वो चीज़ है कि जो हमको और आपको अल्लाह का वली बना सकती है। फिर एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीन आमनु व अमिलु सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक

0: वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत डाल देगा लोगों के दिलों में। गौसे पाक की मोहब्बत आज मुसलमानों के दिलों में है, क्यों? इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी, आमाले सालेहा की ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दिया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? क़ुरान से। माँ के पेट में थे तो क़ुरान माँ पढ़ती थी, तो बेटे ने उतना क़ुरान ज़बानी सीख लिया, ये क़ुरान की बरकत है। आज हम क़ुरान करीम को ऐसे नहीं देख रहे हैं जैसे देखना चाहिए। आज हमारा ताल्लुक क़ुरान मजीद से इतना नहीं है जितना हमारे बुज़ुर्गों का था। हमको चाहिए कि हम क़ुरान पढ़ें, क़ुरान पढ़ाएं, क़ुरान सीखें, क़ुरान सिखाएं। और ये 11वीं शरीफ का महीना, इसको क़ुरान का महीना बना दीजिए, इसको दुरूद का महीना बना दीजिए, कि इस पूरे महीने हम घर में बीवी बच्चा माँ बाप घर के सब लोग बैठकर थोड़ा क़ुरान पढ़ेंगे, थोड़ा दुरूद पढ़ेंगे। तो 11वीं शरीफ का महीना या गौसे पाक का महीना क़ुरान का महीना बन जाएगा, दुरूद का महीना बन जाएगा, नेकियों का महीना बन जाएगा, हमारे बच्चे नेक होंगे इंशाअल्लाह ताला। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अजरन जो गम आज़ाद कुन, दर्दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मदद, क़िबल ए दी मदद, काबे ईमा मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामईन, उर्दू नशरियात बज़्म अक़ीदत में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है, खैर मकदम करता है। और आज के ख़ास प्रोग्राम में हम जय्यद आलिम दीन शान अहले सुन्नत मौलाना मुहम्मद शमीम अशरफ अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह को खैराज अक़ीदत खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमें उनकी ज़बानी उनका एक ईमान अफरोज़ बयान समाप्त करने की सआदत नसीब हुई। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वैसे भी कहते हैं कि जब हमारे दरमियान कोई जय्यद आलिम दीन, कोई अजीम बुज़ुर्ग, कोई आलिम दीन बाहयात हों, हमें उनसे फैज़, हमें उनसे बरकतें हासिल कर लेनी चाहिए, वरना शायर का ये शेर सच साबित हो जाता है कि मौत व हयात आँख मिचोली का खेल है, मौत व हयात आँख मिचोली का खेल है, हम छुप गए तो आपसे ढूंढा ना जाएगा।

मौज़ सामीन, हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंतहाई सादगी वाजी के साथ बसर की। वो जिससे भी मिलते अपने इनकसारी से उसे मुतासर करते। जामा मस्जिद पोटली से सुबुकदोश होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन कौफुको में रहे और उसके बाद कास्तिल में ठहरे। आपकी अखलाक की कशिश, इखलास की चाशनी और इल्म का नूर लोगों को आपकी तरफ खींच लाता। आप रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दम तक दो आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम फैलाते रहे और हर जगह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराते रहे। आपको मदीना मुनव्वरा से एक ख़ास अकीदत थी, मोहब्बत थी, उन्स था। तकरीबन हर साल आप रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के महीने में मदीने शरीफ में अपनी हाज़िरी देते थे। लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है तो बस ये कि मर जाते हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत अल्लामा मुहम्मद शमीम अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत नासाज रहने लगी और जुमेरात 3 दिसंबर 2020 बमुताबिक 17 रबीउल आखिर को सुबह करीब 9:30 बजे इल्म अमल का ये अज़ीम आफ्ताब अपनी ज़िंदगी की किरणों को समेटते हुए अपने पीछे लाखों लोगों को सोगवार छोड़कर नज़रों से ओझल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात से, आपकी रहलत से मॉरिशस में गम की लहर दौड़ गई, हर आँख नम और हर दिल अफसरदा हो गया। सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें कई उलमा वईमा ने शिरकत की और फिर मदफन बुआमौशां तियागूश के कब्रिस्तान में किया गया। बिचरा कुछ इस अदा से कि रुथ ही बदल गई, बिचरा कुछ इस अदा से कि रुथ ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।

ये जजीरा उनके फैजान से महकता रहेगा, हर दिल उनके पैगाम से झलकता रहेगा। ये जजीरा उनके पैगाम से, उनके फैजान से महकता रहेगा, हर दिल उनके पैगाम से झलकता रहेगा। ये नाम शमीम अजहरी मिट नहीं सकता, ये जिक्र अहले दिल में गूंजता रहेगा। सामईन कराम, मौलाना मोहम्मद शमीम अजहरी रहमतुल्लाही की रहलत बिलयकीन एक खला है, मगर उनका फैजान आज भी हमारे साथ हैं। वो मिट्टी में जा मिले मगर दिलों में जिंदा रह गए। आइए उनके लिए दुआए इसाले सवाब करें कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बनाए, हमें उनकी तरह दीन के सफ़ीर बनने की तौफीक दे और हमें उनके इखलास, आजजी और मोहब्बत का ज़र्रा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी के साथ आज की बज़्म अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती हैं। अपने हम सफ़र निसार अख्तर को अब इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले इतवार को फिर हमारी मुलाकात होगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आज के ख़ास प्रोग्राम की वजह से मैं आपके पैगाम, आपकी दुआएँ नहीं ले पाया, माजरत खा हूँ। मगर वादा है कि अगले हफ्ते फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आपके पैगाम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来欣赏几首优美的歌曲。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: नमस्कार आदाब और गुड आफ्टरनून श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय रेडियो मॉरिशस पर 4:09 हो चुके हैं। हमारा आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। और इस कार्यक्रम में जैसे हमेशा मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आती हूँ, विषय लेकर आती हूँ, जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ अपना विचार दे सकते हैं और इसी के साथ चटपटी बातें भी हो जाती है आप लोगों से। और नंबर तो वही है 4028085 पर 4280 85 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और 5251705 पर अगर आपको कॉल नहीं मिल रहा है, लाइन नहीं मिल रहा है, तो आप अपना मैसेज भी हम तक भेज सकते हैं, हम अवश्य पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वैल्यूज़ जो हैं, संस्कार जो हैं, पुराने नहीं होते। आज हम मॉडर्न तो हो गए हैं, फ़ोन स्मार्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई, लाइफ फास्ट हो गई, लेकिन एक सवाल है, क्या हमारी वैल्यूज़ भी फास्ट हो गई हैं? पहले घर में सिखाया जाता था, बड़े से इज्जत से बात करो, छोटे से प्यार से बात करो, मेहमान आए तो दिल से स्वागत किया करो, और किसी की मदद करो तो उसका हिसाब मत रखो। आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने बिजी हो गए हैं हम सभी। लेकिन वैल्यूज़ का मतलब पुराना ज़माना नहीं होता। रिस्पेक्ट इज टाइमलेस, काइंडनेस इज टाइमलेस, ऑनेस्टी इज टाइमलेस एंड ग्रैटिट्यूड ऑल्सो इज टाइमलेस। कपड़े मॉडर्न हो सकते हैं, सोच नहीं हो सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसानियत कभी आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। लाइन पर कौन है? अवश्य हरीश जी ही होंगे, नहीं चित्रा जी है। आइए उनको हम सुनते हैं। नमस्कार चित्रा जी।
1: हाँ, जो के नमन करती है पूजा जी,
0: आपका
1: स्वागत करती हूँ आपको हमारे आप कार्यक्रम में। अच्छी विषय डाला आपने,
0: धन्यवाद।
1: तो हाँ पूजा जी, कैसे हैं? आपका मुस्कान जो आ रही थी ना रेडियो मॉरिशस के द्वारा से, वो डालबिया में आज हो गई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। आप कैसी हैं? बड़े दिनों के बाद आप मेरे इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं।
1: हमेशा सुनती हूँ बेटी, हमेशा साथ साथ रहूंगी।
0: और
1: आपका कार्यक्रम जो बहुत सुंदर से सजाया आपने, हमर आप जो विषय है जो इज्जत ना,
0: हमारी संस्कार जो है कभी पुरानी नहीं होती।
1: नहीं तो ये संस्कार में एक शब्द मैं बोल दूँ
0: कृपया।
1: जब बचपन में थी आगे तो टीवी नहीं रहा था, टेलीविजन नहीं रहा, रेडियो कुछ नहीं रहा। मामा बैस के चूल्हा में भोजन तैयार हो जाए, बैस के पीढ़ा में बैस के बातचीत करब, जब मामा सिखैन जा संस्कार संस्कृति सिखैन कैसे जियल जाला, कैसे जब ऐसे सीख सीख के सीखती हूँ माता से। माता जी मेरी माँ मेरी गुरु थी, हमेशा उनका गोद में बड़ी पली बड़ी बड़ जाना हो गई थी मैंने। तो जब सीखती हूँ तो ऐसे बोलते हैं, जब जाती है बजाना लो के हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, तो ऐसे सिखाती है निमन कर्मा करना चाहिए।

0: थी, तो मैंने बोला माँ जब मैं जनालो के प्रणाम करती हूँ तो वो लोग नहीं बोल पा रहे, तो बे कोई बात नहीं आज नहीं तो कर फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, यही
1: जी।
0: सिखाना है माता जी। तो ये सीख के कैसे अभी मैं अपना मेरी पूजा के साथ सीख रही थी, फिर भी बच्चे हैं मेरे आगे,
1: जी
0: आपका शिक्षा तो बहुत बहादुर है आप भी दूसरी मेरी बिटिया, हमेशा
1: धन्यवाद।
0: इसमें रेजो में नया नया विषय लेके आना, तो सर कैसी बेटी है एक छोटा सा मैं हाली हाली पंखुरी में बोल दी बोल दो, क्योंकि कल सर है कृष्णा सर है ना मुर्गा सा गोविंदा पूजा, कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजा दी मुरली मुरली

0: ये खास मेरी पूजा जी के लिए और विजय भंडन सुन रही थी, बहुत यार दुलार सी,
1: धन्यवाद,
0: अनुमति दीजिए
1: बहुत
0: पूजा
1: बहुत
0: जी, प्रणाम।
1: धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम और शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। वैल्यूज जो है, संस्कार कभी पुरानी नहीं होती। आइए सुनते हैं अगले श्रोता को, उनके पास क्या
0: हेलो।
1: विचार है। हेलो, नमस्कार,
0: हाँ, मैं राधा हूँ।
1: आपका स्वागत है राधा जी।
0: हाँ, धन्यवाद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, विषय
1: धन्यवाद।
0: भी बहुत अच्छा है। और जो आप जो बोल रहे हैं यहाँ, वो तो सच में कभी कम नहीं होता है, नहीं घटता है, लेकिन इसको संभालना ये हमारे हाथ, हमारे वश की बात है।
1: जी
0: यदि हम चाहें अपने संस्कारों को जीवित रखें, रखना चाहते हैं, तो हमें उसका मतलब कि पालन करना चाहिए। देखिए, पहले के जमाने में माता पिता को बोलना नहीं पड़ता था, कोई बड़े आए, कोई परिवार आए तो जाकर नमस्कार करो, प्रणाम। बच्चों में स्वभाव से वो था, सहज भाव से कोई भी आता था, प्रणाम नमस्कार करो, कहीं मंदिर जाओ, कहीं भी कोई रास्ते में मिल जाए, चाचा पप्पू आदि। और अभी तक हमारी वो आदत है, कोई भी किसी भी वर्ग के लोग हो, उनको देख कर हमारी नमस्कार बोंसू बोंसू का चलता है। तो ऐसे ही इसको रखना जरूरी है। और हमारे संस्कृति में केवल ये ही नहीं आता है, संस्कार संस्कृति में, हर किसी के संस्कृति में उनके शास्त्रों का भी कुछ अपना मूल्य होता है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और शास्त्रों को पढ़कर उसको अपने जीवन उतारना चाहिए। जैसे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए रामायण भगवद गीता क्या है, ये पुराण क्या है, जिसका भी जो धर्म ग्रंथ है, उनको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। ये भी एक संस्कार ही है, ताकि कल कहीं वो जाए किसी सभा में, कुछ सुनाना पड़े उनको, किसी कोई ने किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो उनके पास ये जवाब होगा देने के लिए कि इसमें ऐसा है वैसा है, या वेद के बारे में। तो ये भी एक संस्कार है, और इसको भी जीवित रखना है। माना कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, कलयुग सच में कल का जमाना है, मतलब कल मशीन का जमाना हो गया है, सब कुछ कल से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने संस्कारों को भूल जाए। अब बहन जी, गुरु, अभी के कुछ बच्चे ऐसे हैं, सच में बोल रही हूँ, वो देखते हैं जो आपके साथ पढ़े चुके हैं, वो आपको देखकर एक नमस्कार प्रणाम नहीं बोलते हैं, उनको शर्म आती है प्रणाम नमस्कार करने में। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे, किसी और का बच्चा यदि उनको देखकर ऐसा नहीं करेगा तो उन्हें कैसे लगेगा। तो ये सब सिखाना चाहिए बच्चों में। और अभी के बच्चे तो मैं सोचती हूँ काफी समझदार है, वो इन सब का पालन करेंगे तो हम हमेशा अपने जो जो कैसे कह रहे हैं ना, हमारी वैल्यूज हम हमेशा रखेंगे। यही मुझे इतना ही कहना है। और शुभ संध्या
1: शुभ
0: आपको,
1: संध्या आपको।
0: मैं कहूँ क्या कहूँ, मैं आपका हौसला अफजाई करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आती रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: धन्यवाद
1: जो है,
0: आपको जी,
1: और आपको
0: धन्यवाद,
1: शुभ
0: शुभ
1: संध्या,
0: रात्रि, शुभ
1: आपको
0: संध्या, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि आपको भी। वैल्यूज जो है कभी पुरानी नहीं होती, और क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बचपन से बड़ों से हम सीखते हैं, नाना नानी दादा दादी, हम सब कुछ सीखते हैं, तो क्यों ना हम इस परंपरा को, इस संस्कार को आगे बढ़ाएं। आइए अगला श्रोता जो है उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते बादला जी, कैसे हैं आप?
2: बिजली का लिते चमकता और

0: तू गई सोना काली ते चमकता
1: काही चमकता बोलता
0: हाँ तो हमें को पहला आई आई विषय हुआ क्यों कर आपके पाई चली बसे करता तो है मैं को है जितना भी है जवान पीढ़ी लोग बा तो चाहे ना रिलीव नहीं किया जो प्रोग्राम वहां भी होता ना बस बहुत कम थी लोग कता वाजे माजे में जस्ती बा तो हमने के जब पीढ़ी सीनियर जाता कहीं निकोन आसमान में है प्रोग्राम वहां करब सा ना चाहे ना रिलीव नहीं किया जवान लोग के चाहना रिलीव लेके नहीं चाहना शरमाई के क्या मैं ए गया उस कर तू को रिजे कर दिया
1: काहे नहीं
0: हाँ अलाइला हाँ बस ऐसा नहीं बेचे करना दिया राजू हाँ अच्छी द वैल्यू अभी बहुत जिमिनिया होता बहुत जिमिनिया होता आदमी भुलाता संस्कार भुलाता हब्बी को मजे आगे के जैसे वैल्यू रहा और हब्बी के बहुत डिफरेंस बना ऑसिया के बहुत अच्छा रहा मैं हब्बी जो मोडर्न बा तो उतना नहीं अच्छा बा आदमी हब्बी जस्ती पैसा के पीछे धोगा था ना संस्कार भुला ही ले जाता बैठ का भुला जाता आदमी और वैल्यू जो न है जो हमी के वाले है सब आदमी के वाले है एगो छोटा आदमी के बा कमेंट यानी गरीब बा धनवान बा सब ले धनवान बा तो सब के पारे ही वाले है बा ना ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न इक्वल बट डिफरेंट इन रैंक हाँ तो ये सच्चा है हम नहीं बोला चाहिए एनसाइक्लोपीडिया में है बड़का बड़का विद्वान लोग लिख ले बा समझ तो भाई एक मजा यती बा और हाई वैल्यू जो बाजार में नहीं मिलेगा ना बाजार में तो सब्जी फ्री सब मिलेगा ना तो वाले चाहना सीखे के आदमी से इंटेलेक्चुअल से चाहना सीखे के जब वो बचाता सुनो जब वो बचाता तो सुनो कॉम्प्रो हो तो समझ लो तब बहुत चीज कॉम्प्रो हो और अभी एक ता उतना नहीं बना फैमिलियार में ले होते जा एकता नहीं बना
1: हाँ नहीं बा
0: अच्छी सब सब संजी होता अभी रिलीजियन हमारे लिए हम बताए रिलीजियन सब एक के गो है एक के गो भगवान है से मैं डिफरेंट कम लोग के वो डिफरेंट अच्छी मैं भगवान में के पूजा करता हूँ ना और भगवान से क्या मांगा तो आप हमने के जीवन निमन से जाए हमने के लाश होते निमन से जाए काम धाम कर खा पिया रोटी कपड़ा और मकान तो है ये मरे गो छोटा संदेश बा और उस सबको एक रिमेसे कर रहता है एगो लेता मिलता है गो बेगो बढ़िया सौते डाल दिया सबको एक नमस्ते लो पैर आदमी रब के
1: धन्यवाद और तो हर गीतो डाल दे अब जा शुभ संध्या थोड़ा और एक और श्रोता बातें चलो कर हम सुनी रहा सा हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते जी
2: पूजा जी
1: हाँ जी मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं
2: हम ठीक हूँ संगीता ही मॉडल में
1: हाँ हम जानी ला बोला संगीता जी
2: हाँ हाँ बोला सही पूजा जी देखा अच्छा अच्छा विचार निकालो अच्छा लगा था सुने कि हम खुशी दे रहा
1: अच्छा खुशी के मारे हंसत हुआ ना हाँ ये बढ़िया हाँ हमारे खाते में
2: हाँ ये तोहर संग आयला हंसी ला तो अच्छा लगे ला सब चीज भुला जाए ला
1: अच्छा बहुत धन्यवाद बोला
2: हाँ है संस्कार संस्कार तो हमने इमली के लेकर लोग हमने अपन माँ से सीख ले सब हमने अपन लड़का लोग के चाहला सिखाई के जैसे बोलब सामने के लड़का तो वो लड़का पीती बा हवे सीखेला और नहीं सिखाई बा नहीं बोल बता वो कब्बो नहीं सुनी
1: हाँ बोल बला नहीं कर बा जनी हाँ
2: और वो लड़का से निमन से बोल विचार कर बा तो लड़को निमन से बतियाला हम तो देख रहे अपन लड़का लोग से निमन से मलिका लोग सब दूस बा निमन से बतियाला अब बोल बा हो चाची है नानी है दादी है प्रणाम करे के नमस्ते तो रिस्पे करे लंसा अभी तो कितने नहीं का जाला कितने सिंह वंशा कितने कोई बात जाला इसे मुड़ी गार के जाने न जखे है से मन नहीं एगो नमस्कार करे लंसा चाहे ना का बोला काहे नहीं जाने
1: शर्मा
2: हाँ काहे नहीं जाने लंसा का कि है सा यहाँ पर ही हाँ बोले ला हम हमें बेटा लग बोला एगो सुइया कर देखे हल देखे मैं चाची बा दादी बा नानी बा सब गाँव में चाहे ना उसे जीवत
1: जाने ला जब हम छोटा रनी तो हमार माँ हमरा सिखैले रहल सबके प्रणाम बोले के जहाँ जेबे बैठे के आगे सबके प्रणाम बोल के तब बैठिए तो हम है जोन जोन आदतवा बातें

0: ऊ संस्कार वा रह गल बाते हम जहाँ जाइला तहाँ जाइला सब कोई के प्रणाम करके तब बैठब त कबो कबो एगो मान ल तोहर तोहर लास के तोहर उम्र के जवान रही त तोरा हँसी त हये जन जन नौजवान बाते ओ लोग हँसे लंसा त हये ई संस्कार वा जन ह कम हो जाला त हम बोलब कि कोई के नहीं चाहेला शर्माए के एगो प्रणाम बोले के एगो नमस्ते बोले के नहीं चाहे शर्माए के बोले
1: हम प्रणाम करके कुछ गुड़ में गिर जाए बड़ा आदमी बा बड़ा बा तो जन बड़ा बा जन एगो कातो में बना जा आशीर्वाद मिल जाला
0: चाहे ला लेके
1: आशीर्वाद ले ला जैसे आज तू जहाँ हवा था कितना निमन संस्कार मेरा आज कहाँ बैठल हवा कहा एगो निमन एक बार निमन क्लास में बैठ के जोली से बतिया ला सब को सब कोई के निमन निमन सिखावे ला याद से का बोले ला तो चाहे ला सीखे के तो लोग से हमने की चाहे ला सीखे के तो तू तो हमारी बेटी नहीं था वाह मैंने कहा हम तो बड़ा वे है मैं समझ सीखे के तो लोग संस्कार जस्ती अच्छा
0: हाय जो संस्कार है वो मान ला तो हर माँ बाप थोड़ा दिले बातें तो वो कहूँ नहीं जाला वो तोहरे में रही हाँ आज देखा हमार तब माँ नहीं बा माँ में इस माँ उकर उकर उकर जोन संस्कार बाते उरह गलबा हमार में और जहाँ तहाँ जायला जोन अभी बतिया बतावत है जोन बोल बाला करत है उकरे में देवल हाँ
1: ओका दिखे ना तो आज माँ रख ले अब वो
0: रख ले हैं
1: रख ले चाहे ना रखे के
0: तो ये जब मान ला यही उकर याद है यही उकर संस्कार है जो अच्छाई बतेलक हमरा वो अच्छाई के फैलावत है हैं जा जनाजो में सब कोई के
1: हाँ तो आज माँ बाप अच्छा संस्कार अपन ले क्या के दिले बा तो सब कोई बोली दिखे वो निमन से उकर माँ निमन संस्कार निमन ले का बनल बा हाँ कैसे हम लोग बेटा लोग बड़ा बा मतलब बेटा
0: और इस संस्कार के चाहेला जो जो नौजवान आजकल के आवत हो जा चाहेला बताए के और चाहेला जो जो छोटा छोटा बच्चा बाते जो जो छोटा छोटा लड़का बाते चाहेला दादा दादी नाना नानी लगे संगे जाए जाए के पूजा पाठ में बैठका में चाहेला जाए के तब उस संस्कार वा आगे बढ़ी
1: हाँ ओम के नाम ले बस शिवाला के नाम ले बता लेकिन जाने नहीं सही बता नहीं बता हमारे को लेकिन मैं बोली ना तो कहाँ सुशील ले कोई भी नहीं राधी देव राधी की भी जाए नमस्ते प्रणाम हाल तो करे ला तब वो भुला जाए तो मतलब की भी जाए तो बोले नमस्ते राधी जैसे ले कोई से आई तो हम सिखावा था योगी अच्छा अच्छा वहाँ से

0: भाषा ही सीखी बा
1: भाई तो आजकल के पहले तो हमनी के माता पिता डॉन्ट डॉन्ट के बुलाए भेजे जा जा हव जा पाठ में जाओ और पूजा पाठ में रह कि बा जा है बैठका में जाओ तो वो लोग जात रहलन जा तो आजकल के लड़का मान ला वो लोग के डॉन्ट बता वो लोग खिंचा जन जा खिचा जालन सा और नहीं जइन सा तो है ये खातिर हमनी के जो संस्कार वो कमती हुआ था
0: कमती होता है हिंदी तो पहाड़ ले बताई लंबा लंबा मुँह पहाड़ ले बाई प्रे कर करके
1: पीतीय सन
0: से और या ती है ना मायन तो जोड़ी से पहाड़ ले बा तो रोज के पढ़ीला रोज के पढ़ीला
1: बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी इतना हमनी के संगे जो ज्ञान बांटले हवा एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको भी शुभ संध्या
1: शुभ संध्या संगीता जी तो एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है हेलो
2: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते विशेषर जी कैसे हैं आप
2: सब ठीक है
1: चलो आप कुछ बोला
2: हाँ हम बोला कि जो ऑसियन वैल्यू जो रहल वो कुछ भी हो दुनिया कितनों भी बदल जाए लेकिन वेद पुराण गीता रामायण के वाले हमेशा रहल आ आज ले भी रही और जे है ग्रंथों के भूल जाए तो अपन जीवन में सब कुछ भूल जाए ओकर में पहला जे सब कोई बोला था संस्कारे नहीं रही हमने छोटा जब रही सब भाई बहन सब आधा किलो में चल के जात ली सब बैठ का हिंदी पढ़े
1: ये तो बोला वहां
2: पर हाँ हुआ बाल शिक्षा पके जान कर ली सत्संग गुटका आके घरे पहला जैसे बैठका से अला हाथ पैर सब धोकर देशवित संध्या पर बैठ गया माता पिता सब कोई संगे संध्या हो जाए तब भोजन मिली भोजन शाकाहारी एको है यो नहीं दिशाएं एको नहीं तब हमने के जो संस्कार मिलल हवे आज ले हमें सेवी कर दी हवे सब कुछ मिलल आज हिंदी के पढ़ा था नहीं का लोग नहीं पढ़ा था
1: नहीं पढ़ा था हाँ सच्चे की हाँ
2: हम हिंदी जाएला पढ़ावे 50 बरस हमार हो गल हिंदी पढ़ाईला आज हमने के निकोल में बहुत कमती लेता बा
1: हाँ कमती है सच्चे की बोला
2: क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन आज हिंदी पढ़ा था उलो के लड़का उलोक के लेकर आके हमने के लिए कुल में हिंदी पढ़ा था और हिंदू अपन लेकर के हिंदी नहीं पढ़ा हुआ था तो हमने के दुख के बात ई बा कि काल चल के कैसे बोला तो युग में संस्कार रहे नहीं करी तनको संस्कार नहीं रही आज संस्कार हो गल बा मोबाइल सिनेमा है सब हो गल बा देखा है ये आर खा पिय नाच गाव कूद सब कर लेकिन संस्कार नहीं बा अब तो का होता बेटा बेटा जब मैं ढोलक बजावता माता जी नाचता और पहले गीत गवा हुए तब दुआ ने रहे को लड़का के जाए के वहां भगयन से जा जा जा यहाँ से यहाँ से जा लेकिन आज दुनिया उलट पुलट
1: हो गल बा
2: उलट पुलट हो गल बा जितना नए काम करे के हुए कम आज हुआ था तो पहले के वैल्यू जो रहा वेद के पढ़ा था आज रामायण गीता बहुत कम लोग पढ़ा जो विद्वान जो हिंदी पढ़ ले बा लोग पढ़ा था लेकिन जो हिंदी नहीं पढ़ ले बा उल्टा हो गल बा
1: उल्टा
2: सच एक जात जात जात जात का हो एक दिन हमने के संस्कार खत्म हो जाए भाषा खत्म हो जाए सब कुछ हमके रियासत संस्कार कुछ भी नहीं रही कैसे बोला तू अंजा अभी कोनो वो परिवार हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्ते बोला प्रणाम कर उन लोग के अब बड़ा आदमी है जब लोग के पैर छुआ तब कहाँ बा आशा बा कि जितना हमने सुना थे जा अपन लड़का के बैठ का विदा कर हिंदी पढ़ावा हिंदी पढ़े तो वेद पुराण गीता रामायण यज्ञ हवन करे जानी पूजा पाठ करे जानी अभी मंदिर में जाती सर कुछ नहीं बोली ला सर खाली खड़ा भी ला सर मन मन में बोले था तो क्या समझा था भगवान के कान है भगवान के आंख है भगवान सब कुछ देख।

0: श्रद्धा तो आशा बा जितना हमनी है स अपन लड़का के हिंदी पढ़ाव और संस्कार डाल। जब संस्कार नहीं डाल सर हवे लड़का भटक जाला, नशा करे लगे ला, इधर उधर बुरा काम करते जाला। तो आशा बा कि सब कोई सुनता अपन लड़का के हिंदी पढ़ाव संस्कार देव लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी,
1: बहुत
0: मौका
1: बहुत
0: दिलो,
1: धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। वैल्यूज जो है कभी समाप्त नहीं होता। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी, मैं तो आशा दानु बोल रही हूँ।
1: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं पूजा जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप आ गई हैं ना, और भी मैं प्रसन्न हो गई हूँ। चलिए बताइए आपका क्या कहना है।
2: सबसे पहले बड़े जनों को सादर प्रणाम है और क्षमा चाहती हूँ पूजा जी, आज मेरी आवाज में थोड़ी सी खराश है, फिर भी एक दो शब्द में जोर देना चाहूंगी।
1: अवश्य
2: जी पूजा जी, देखिए ख्याल नहीं हो सकते हैं, विचार नहीं हो सकते हैं, पर संस्कार कभी पुराने नहीं होते। मेरी माता जी भी मुझे पहले जमाने के संस्कारों की बातें सुनाया करती हैं, और सबसे पहली बात मुझे वो ये सिखाती है कि बड़ों को आदर देना, सम्मान करना और छोटों को प्यार देना, ये हमारे संस्कार में सबसे बड़ी बात गई है। क्योंकि अतिथि आते हैं, जो पहले के जमाने में जब नाना नानी दादा दादी दूर से आते थे तो बच्चे सभी घर में जितने भी छोटे बड़े बच्चे होते थे सभी आकर उनको प्रणाम नमस्कार, और माँ कहती है कि कुछ हो या न हो पर पानी तो जरूर पूछना चाहिए, आप क्या पियेंगे, बैठिए, ये सब पूछते थे। अभी के जमाने में आप देखते हैं तो बच्चे घर पर होते हैं, परिवार आकर चले भी जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कौन आया है कौन गया है। और दूसरी बात ये है पूजा जी, कहते हैं ना भले हम आज के इस नए जमाने के चक्कर में हम पड़ गए हैं, पर पहले के जमाने में सभी माता पिता बच्चे नीचे बैठकर खाना खाते थे, अभी हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाते हैं। हाँ ये सही बात है, पर पहले की बात कुछ और ही थी, नीचे बैठकर खाना खाना परिवार के साथ और बोल कर एक टक्स में जो प्यार था वो आज के इस जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है, पर कुछ कुछ घरों में अभी भी वो संस्कार वो संस्कृति जिंदा है। जैसे कि पूजा जो सभी करते हैं, पर पूजा पाठ के बाद जैसे पूजा हो जाती है, संध्या वंदन हो जाती है, तो अभी भी बच्चे कुछ बच्चे हैं जाकर बोलते हैं प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी, और छोटे भाई बहनों को कहते हैं प्रणाम, क्योंकि जब जो बड़े बहन होते हैं भाई होते हैं उनको भी प्रणाम बोलते हैं, तुरंत स्पर्श करते हैं। सोने से पहले मेरे घर में कुछ यह रीत है, मेरे माता पिता ये रीत उन्होंने बनाया है, हम गुड नाइट या सिद्धि नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं राम राम जब तो चलो हम सोते हैं कल सुबह, और जब सुबह भी उठते हैं तो हम कहते हैं शुभ प्रभात और सोने से पहले राम राम। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना पूजा जी, ये जो हमारे पुराने संस्कार जो होते हैं आज के जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए एक दर्पण स्वरूप है। अगर हम बड़े जन अपने संस्कृति को अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, तो क्यों नहीं आज के हमारी नई पीढ़ी भी वो भी सीखना चाहते हैं, बस जरूरत है उनको प्यार से समझाने की। जैसे उनको हम कहते हैं आप चलो रामायण पढ़ने चलो,
1: हाँ, उसका लाभ लाभ बताना चाहिए, लाभ लाभ क्या मिलेगा तब वो लोग जाएंगे। हाँ
2: अब जैसे पहले के जैसे कि अक्सर ये देखा गया है कि घर में कोई वाद विवाद टूटू में हो जाती है तो बड़े बच्चों पर चिल्ला जाते हैं या बच्चे जो है बड़ों को कदर नहीं करते हैं, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार की कमी है अभी भी घरों पर। तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले तो ये सिखाना चाहिए, यदि आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप जैसे अपने माता पिता हो या स्कूल में ही अपने अध्यापक या अध्यापिका है, आप उनको सम्मान देंगे तो आपको भी वही प्यार मिलेगा, और आप उनको जब यदि आप अपने छोटों की गलतियों को भूल को क्षमा कर देंगे करना कर देंगे तो छोटे भी अब झुक कर क्षमा मांगने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम संस्कारों की बात करेंगे, अगर छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे ना, तो संस्कार संस्कृति और सभ्यता वो कभी नहीं मिटेगी, जुग जुग तक जिंदा रहेगी।

0: यही पर समाप्त करती हूँ पूजा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है आशा जी, और शुभ संध्या आपको।
0: आपको भी शुभ संध्या पूजा जी।
1: नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। इंदिरा जी नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। हमारे आप कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: स्वागत है हमारा पितृपक्ष मनाने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी, साथ में मनाएंगे। और क्या बात है कि वो तो अपने लोगों का होता है ना, आपने अब तो विषय निकले हैं अपने लोगों के कैसे साथ गुजारते हैं
1: जी,
2: कैसे बिताते हैं, सभी सभी भाग लेने के लिए और विश्वास से जो है तो वो होते हैं, और जो नहीं है तो वो टूट जाते हैं
1: जी,
2: ठीक है ना
1: जी।
2: ऐसा करते हैं कि जो समझते भी नहीं है आपको, जो समझने की समझते नहीं है, कहते कि मैं भी बलवान हो गई हूँ
1: जी।
2: मैं ही बलवान हूँ। तो इसके बारे में, बलवान तो तुम नहीं हो सकते हो
1: जी,
2: छोटे से छोटे छोटे वाले से जानकर तुम तो खुद कर बड़े होकर बलवान तो नहीं हो जाते हैं, है ना
1: जी।
2: क्योंकि ऐसी ऐसे बात चलते है ना आजकल। ठीक है पूजा जी, ओके
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको।
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्ते।
3: नमस्ते पूजा बेटी।
1: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
3: मैं माला फाउदा हूँ।
1: आपका स्वागत है माला जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ, आप कैसी?
1: मैं भी ठीक हूँ माला जी। आपके पास क्या कहना है कि हमारे जो संस्कार हैं वो कभी पुराने नहीं होते, उस पर आपका क्या कहना है?
3: कभी पुरानी नहीं होती, संस्कार जो है कभी पुरानी नहीं होती है। देखिए संस्कार जो है, बड़ों में भी संस्कार होना चाहिए, तब तो वो बच्चे को सिखाएंगे ना
1: जी।
3: जब बड़ों ही में संस्कार नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? ये तो नए जमाने ही, कैसे कहते हैं, अभी नया जमाना है, कलयुग का जमाना है। जब अभी आपने कहा थोड़े देर में कि आप अपने माँ की सिखाई हुई बातें को अभी याद करके
1: जी जी,
3: तो मैं भी वैसे ही हूँ। मैं तो हम हर सांस में मेरी माँ की जो सिखाई थी उस जमाने में मैं याद करती हूँ और वो ही करती
1: जी।
3: तो सबसे पहला गुरु तो माँ है ना,
1: माँ है जी।
3: माँ की शिक्षा जो है, जो बच्चों को छोटे ही से माँ की शिक्षा मिलती है, तो वो बच्चा संस्कार से अनजान नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की शिक्षा जो घर से सीखते हैं, घर के वातावरण, घर के अनुशासन, घर की डिसिप्लिन जो है, सुबह से अब माँ बाप जिसकी कर रहे हैं, बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, ये वो तो बच्चा क्या करेंगे। तो मेरा कहना है कि बचपन से घर का वातावरण सुधारना चाहिए, घर में संस्कार लाना चाहिए, ताकि वो बच्चा संस्कार छोटे से ही सीखे। तो बाहर में कभी नहीं वो गलत, उसको कितना भी स्कूल में नया दोस्त ये वो जिससे गैर समुदाय लोग मिलेंगे, लेकिन उसको एक डर रहेगा कि माँ बाप के संस्कार जो है, उनका विद्या जो है, उनकी सिखाई हुई है, उसको कम से कम थोड़ा ना थोड़ा याद पड़ेगा
1: जी।
3: अभी आप, मैं ये मैं बात हमेशा कहती हूँ, बहन लोग कभी जाएंगे, कहीं पूजा में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उन लोगों में भी संस्कार की कमी होती है, नाराज मत होइए। और जो बहन भी सुन रहे हैं मुझसे नाराज, मैं बहुत लेक्चरर नहीं हूँ, लेकिन देखा हुआ जो देखते हैं, अब कभी आपको देखेंगे ना तो कभी अपने आप से वो, जब तक आप नहीं बोलेंगे नमस्ते, उसको आप नहीं टोकेंगे, वो नहीं कभी।
1: हाँ, ये सच है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब आप नमस्ते बोलते हो, कभी बोलते हैं कि नहीं नहीं नमस्ते ऐसे मत बोलो, नमस्ते वैसे मत बोलो, मुझे नमस्ते मत बोलो। तो मॉडर्न के साथ साथ लोग अब केवल जो है सर झुकाते हैं बस ऐसे ही, और कुछ नहीं, बस एक सिग्नल के साथ ही उन लोगों का नमस्ते हो जाता है। पर जो मुँह से बोलते हैं नमस्ते, वो आजकल जो है बहुत कम होता जा रहा है।
3: जो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हम पूजा में गए हैं, कहीं भी गए हैं, अगर बच्चे साथ हैं तो क्या करना चाहिए? आप माँ हैं, आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। आपको चाहिए कि प्रणाम सिखाना।

0: सुविधा में जा रहे हैं, बच्चे को एक दिन दो दिन पांच दिन नहीं ले जा सकते हैं, एक दिन दो दिन तो ले जा सकते हैं ना बच्चे को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो। मालदे वो कहते हैं उन लोगों का देवो है, लेसो है, ये भी तो जरूरी है ना हमारे जीवन में
1: जी।
0: तो यही मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, कि घर का जो बड़े लोग हैं और बड़े बुजुर्ग को अलग कर देते हैं, बच्चों को किसी और के हाथ में या अकेले छोड़ के जाते हैं, तो हमारा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ज्ञान का भंडार है ना, उनके हाथ में बच्चा छोड़ेंगे तो आपके बच्चा कुछ सीखेगा। तो अभी तो नई जमाना है, नया जमाना है, नकली दुनिया है, ये मैं नकली दुनिया कहती हूँ ये। तो अगर घर का सीखा बच्चा, वो शिक्षा मिल रहे हैं सुबह को, माँ की शिक्षा सीख कर बच्चा जाते हैं स्कूल में, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कहना है बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। और परिवार को, माँ बाप को एक मेहनत करना चाहिए बच्चे को रास्ते में लाने के लिए। मेहनत सबसे बड़ा चीज है, अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे, बोलेंगे जैसे आप, वो तो बच्चा एक पानी है, जैसे पानी में कनाल में पानी स्विम करता है वैसा बच्चा जाएगा। तो पता नहीं मेरा कहना आपको अच्छा लगेगा नहीं,
1: बहुत अच्छा लगा और आपने जो भी कहा वो सब कुछ सही है।
0: घर का वातावरण, घर की शिक्षा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माना जी, और हमेशा आप मेरे इस कार्यक्रम में भाग लेती रहें। आपको कहेंगे शुभ संध्या, नमस्ते।
0: शुभ संध्या पूजा जी, और आपकी माँ से बहुत हैं, आपकी माँ के लिए आप बिल्कुल उदास मत हो, ये अभी आपने कहा कि आपकी माँ नहीं है
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइयो उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्ते।
2: हेलो
1: नमस्ते बीना जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, मैं सोचा फोन नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा किचन की तरफ चली गई।
1: नहीं नहीं, आज आपका फोन खटखट नहीं कर रहा है, चलिए बताइए।
2: जी मैंने तो शायद विषय ठीक से सुना नहीं, लेकिन जितना भी सुना मेरे ख्याल से आप संस्कार पे बात,
1: संस्कार पुराने नहीं होते। हाँ
2: तो सही बात है कि संस्कार जो है वो हमेशा नवीनतम ही रहता है, क्योंकि संस्कार देखो कोई कोई व्यक्ति जन्मजात संस्कारी होते हैं, माने ही वो जन्म से ही संस्कारी होते हैं, और कोई है कि जिनको बाद में वे संस्कारी बनते हैं
1: जी,
2: अपने माता पिता से, अपने बड़े जनों के संग में रहकर, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर और ग्रंथों का अनुसरण करके वो संस्कारी बनते हैं। तो संस्कार हमें कैसे आता है? वैसे तो कहा जाता है कि घर से ही शुरू होता है संस्कार, जब हम बचपन में होते हैं, लेकिन कोई जैसे मैंने कहा जन्मजात होते हैं ना, जन्म से ही उसमें होता है, लेकिन जब बाद में कोई पुश करता है तो वो ज्यादा उभर कर आता है जल्दी से वो। और ये जो संस्कार है ना पूजा जी, ये कभी भी समाप्त नहीं, पुराने को तो छोड़ दू, आप चाहे, कहा जाता है शास्त्रों में संस्कार जो है ये सिर्फ यही नहीं रुकता, हमारे अगले जन्म तक जाता है ये संस्कार होता है। तो क्या होता है कि संस्कार आने के लिए हमें सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि रामचरितमानस, भगवत पुराण, भगवत गीता, वेद शास्त्र, उपनिषद, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और करवाना चाहिए बच्चों को भी। अगर माता पिता पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी कहा जाता है शास्त्रों में, संतों का, बड़े जनों का, विद्वानों का कहना है कि अपने संतान को संपत्ति मत दो, उन्हें संस्कृति दो, यानी कि उन्हें संस्कार दो। अगर उस संस्कार रहेगा ना अच्छा, तो वो कहीं से भी कहीं उसके पास लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी, आप ये मानेगी। देखिए आप ही जैसे आप हर बार कहती है कि आपकी माता जी नहीं है, फिर भी आप कितनी संस्कारी है, ये संस्कारी व्यक्ति के बात करने के ढंग से ही पता चल जाता है कि वो कैसा है, क्योंकि देखिए चरित्र का मतलब वो उजागर हो जाता है, समझ रहे ना, जो संस्कारी होते हैं उनसे बात करने का ढंग, उसका स्वरूप, जिस तरह से वो लोगों से मिलता है, जैसे आप ही है, जैसे आप किसी से मिलती हैं या बात करती हैं किसी से भी, तो इससे पता चल जाता है आपकी माँ ने जो आपको दे कर गई है ना पूजा, ये आपको जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा, ऐसा नहीं संसार छोड़ देने के बाद भी ये जो

0: संस्कार है ना, ये रहता ही है,
1: रहता है जी,
0: इसको कहते हैं सुसंस्कार। चाहे आप अगले जन्म में, जैसे हिंदू धर्म में अगले जन्म पे हम मानते हैं
1: जी,
0: तो ये संस्कार भी हमारे साथ चलता है और आगे चलकर भी ये हमें बहुत काम आता है हमारे जीवन में। अच्छा, हमें अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा संस्कारी माता पिता मिलता है अगले जन्म में, अच्छे परिवार में हमारा जन्म होता है। और ये जो कड़ी है ना, ये चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। पुराने को तो छोड़ दो, पुराना तो वो होता ही नहीं है संस्कार जिस तरह। तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी अभिभावक है, माता पिता, कम से कम आप महंगे महंगे चीजें भले दो, संस्कार जो है वो बहुत मूल्यवान है
1: जी। और वीना जी, जैसे अभी आपने कहा कि जो संस्कार हमें अपनी माता पिता से मिलती है वो जन्मों जन्मांतर तक रहता है। और ये जो संस्कार, मैं इसलिए नहीं कहा कि मेरी माँ ने सहानुभूति के लिए, नहीं, पर ये जो मेरी माँ ने मुझे दी है वो अभी तक जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो सभी बोलते हैं कि मैं उनकी एक छवि हूँ। मतलब जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है, भले ही वो आज नहीं है, फिर भी जो भी मैं करती हूँ, भले खाना भी बनाती हूँ, भले जैसे भी मैं लोगों से बात करती हूँ, तो ये उसका दिया हुआ वो संस्कार है ना, वो
0: है,
1: मेरे ही अंदर है और रह गया।
0: यही मैं बोलती हूँ ना, यही मैं बोलती हूँ ना कि आप उनकी, आप माँ की आत्मा जहाँ भी होगी ना, वो बहुत प्रसन्न होगी और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही होंगी जहाँ भी होंगी, भगवान के पास या कहीं भी किसी भी स्थान पर होंगी, अच्छे स्थान पर भगवान उनको सदगति प्रदान करेंगे, जगह पर देंगे, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि जो संस्कार दिया है आप उसको लेकर चल रहे हैं, उस पर आप टिकी हुई है, आप कर रहे हैं, दूसरों को भी शिक्षित कर रहे हैं, दूसरों के बीच को रेडियो के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे विषय आप ला रही है कि जो लोग नहीं भी जानते हैं तो उन्हें भी अब से ये पता चल जाएगा कि नहीं, हमें इस पर विचार करें, क्योंकि हमारे सदग्रंथों में तो संस्कार ही की बात होती है। अच्छी अच्छी पत्रिकाएं, अच्छे अच्छे जो उपनिषद में एक पुस्तक है पंचतंत्र, एक बच्चों के लिए है वो खास, लेकिन ये जो कोई बच्चा पढ़ेगा ना तो वो स्वतः ही वो संस्कारी हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो बुरा भाव, वो दुराचार चारी हो ही नहीं सकता,
1: नहीं
0: वो
1: सकता।
0: सदाचार आदमी बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा, अपने माता पिता का नाम आपकी तरह वो रोशन करता ही रहेगा, क्योंकि ये संस्कार जो है ये कभी कभी भी समाप्त नहीं होने वाली चीज है, ये तो आपके जन्म जन्म तक ये रहेगा ही रहेगा।
1: और ये जो ये जो हम हिंदी पढ़ते हैं या जहाँ भी जाते हैं, बड़े जन जो भी हमें सिखाते हैं, ये मान लीजिए बैठकर सुनना चाहिए। पहले मैं मुझे तो स्मरण है कि पहले मोबाइल नहीं होते थे, मुझे तो जब मेरी HSC समाप्त हो गई थी, मैं यूनिवर्सिटी की पहले जो साल था, जब मैं आई थी यूनिवर्सिटी पहले साल में, तब मेरे पिताजी ने मुझे एक मोबाइल दिया था, मुझे याद है, तब मुझे मिला था। इतने दिनों से मेरे पास मोबाइल नहीं था और HSC के, मतलब मान लीजिए HSC तक मुझे केवल पढ़ाई ही।
0: ध्यान देना, हाँ। जी देखो ना, ब्रह्मचर्य का जब हम चार आश्रम बताए गए हमारे धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जो ब्रह्मचर्य होता है ना इस अवस्था में, तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना होता है।
1: और बड़े जनों के पास जाकर कहानी सुनना, ये मुझे बहुत पसंद थी।
0: हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि उनकी वो संस्कार होता है, वो लोग संस्कार भर रहे हैं, जब आप सुनती है तो कहानी के माध्यम से मतलब वो संस्कार आप पे भर रहा है।
1: और मुझे तो याद है कि हमारे जो मेरे फूफा जी हैं वो हमेशा यज्ञ करते थे, तो वहाँ पर एकजुट सभी बच्चे एकजुट बैठकर कहानी सुनते थे कि जो भी हो रहा है आज समाज में, उसका उसका कारण क्या है और क्या करना चाहिए जिससे हमें, हम इससे बचे, तो उसका प्रचार होता था। मेरे फूफा जी हमेशा करते थे उनके घर पर। और मुझे याद है उस समय मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बोलती थी, तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे हिंदी पढ़ना है, हिंदी जानना है और हिंदी बोलना चाहिए, और मुझे ऐसे फटफट हिंदी बोलना ही है, तो मैंने सीखा और आज सहायता कर रहा है।
0: कितने अच्छे ओहदे पे हैं और इतनी धारा प्रवाह हिंदी बोलती है, किसी भी तरह से अब कोई हिचकिचाहट कोई उसमें वो नहीं है, तो ये सब हमारे संस्कार के कारण। देखो मैं भी अपनी छोटी सी एक अनुभव सुनाती हूँ। मैंने बचपन से बहुत से, पहले हमारे देश में जब मैं छोटी थी ना, तो स्वामी लोग आते थे,
1: जी
0: स्वामी लोग जो आते थे, बहुत स्वामी आते थे, वो बस वासुदेव

0: दयाल जी की प्रवचन मैंने बहुत सुने हैं और उन्हीं के युग में, मतलब जब मैं छोटी थी 4-5-6 साल की, तो स्वामी लोग के समय से वो जो प्रवचन करते थे उनका बहुत बड़ा प्रभाव
1: था। इसीलिए वीना जी घर पर ऐसा जुटाव मैं तो आग्रह करूंगी, सबसे निवेदन करूंगी कि लोग जो हैं घर पर बैठकर ऐसे जुटाव करना चाहिए बच्चों के बीच में।
0: जरूर,
1: हाँ, जब हम बात करते हैं तो
0: ये करना ही चाहिए। इस घर में ये होता है ना तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, बुरे रास्ते पर नहीं जाएंगे
1: कभी नहीं,
0: और उनकी सोच भी हमेशा सकारात्मक रहेगी और वो हमेशा अच्छे मार्ग पर रहेंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा।
1: हाँ।
0: वो कभी माता पिता उनसे दुखी नहीं होंगे बड़े होने पर, तो बचपन से ही उनमें ये डालना चाहिए उन्हें। और अगर पढ़ भी नहीं पाते हैं ना तो बड़े लोगों की कथाएं सुनानी चाहिए।
1: हाँ, कथाएं बहुत बहुत सुंदर हैं और भले ही कैसा हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग जैसे हम बोलते हैं, कहानी सुनाने का ये आज भी उसका चलन है, पर मतलब वो जुटाव नहीं है, बच्चे नहीं आते है, नहीं है।
0: तो यही जी, तो देखिए ना मैं क्या बोलती हूँ, माता पिता में बच्चों के साथ आजकल संवाद नहीं होता है, इसकी कमी है। संवाद जैसे बोलते हैं डायलॉग, जैसे कि खाना खा, इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में, कहा गया हमारे बड़े जनों ने कहा है कि दो चीजें साथ होनी चाहिए, भजन और भोजन। यानी कि साथ में हम भोजन जब करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हमारा मन एकजुट होता है
1: जी।
0: और भजन भी साथ में जब करते हैं तो भगवान ज्यादा सुनते हैं।
1: हाँ।
0: तो बल होता है ना, वो अपना अलग करेगा, आप अपना अलग करेगी, तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है। भोजन भी इसी प्रकार से सभी अपने अपने लेकर, तो आजकल तो क्या होता है कि सभी ये जो मोबाइल का जमाना आ गया है तो सभी उसमें ज्यादा झुके रहते हैं, वो बस इसको प्रमुखता नहीं देते हैं। संध्या करनी है, देख पहले के जमाने जब हम छोटे, जब तक संध्या नहीं करते थे तो हमें खाना नहीं मिलता था पूजा जी, हाथ पैर धोकर या पहले के जमाने में जाकर दिया करो, फिर संध्या करो, जो भी जितना भी आपको आता है करो, भगवान के सामने शीर्ष झुकाओ, फिर भोजन मिल जाता। सुबह में करने के बाद माता पिता के चरण को छूना होता था, प्रणाम करना होता था।
1: हाँ,
0: सुबह
1: हाँ,
0: शाम
1: याद है मुझे तो मार पड़ती थी अगर मैं प्रणाम ना बोलूं तो, मार पड़ती थी, इतने सख्त थे। मैं इतने सख्त परिवार से आई हूँ जहाँ पर जो मान लीजिए जब एक जुटाव होता था, आप हिंदी बात नहीं करना जानते तो आपको ना शर्म के मारे झुकना पड़ता है, कभी कभी चुपचाप जो है बैठकर ऐसे देखना पड़ता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो। ये जो बड़े जन यूं ही नहीं करते थे आपको, मतलब छोटा करवाने के लिए नहीं, ताकि आप पढ़ें। हाँ, ताकि
0: आप पढ़ें। मैं तो ये भी कहूँगी, जाते जाते ये भी मैं जोड़ दूंगी कि मैं इतनी जो आज रामचरितमानस गाती हूँ, इतने मैं उसको समझती हूँ शास्त्रों को। मेरे पिताजी तो पहले होते हैं प्रीवेत होता था, पता नहीं आपको मालूम
1: है। हाँ,
0: उससे मार खा कर मैंने रामचरितमानस रामायण गाना सीखा है। हाँ, वो और उस समय हमारे यहाँ वो बिजली नहीं थी, वो हम वो जो एक होता था ना चिराग में, वो पेट्रोल डालते थे तेल, वो से उससे हम पढ़ते थे। पिताजी रोज शाम को 1-2 चौपाई मुझे उससे मार मार कर, उन्होंने उस वक्त में बहुत रो रो कर ये आंसू वो पुस्तक पर गिर जाती थी। क्रोध आता था उस समय कि ये मेरे साथ ये क्या मुझसे करवा रहे हैं, लेकिन आज मैं उनको बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ उनका जन्म जन्मांतर का, कि उन्होंने जो मुझे धरोहर जो संस्कृति दे कर गए हैं। तो ये तो मेरे साथ कैसे, मैंने कहा कि आपका संस्कार जन्म जन्मांतर चल गए तो मेरा भी मानना है कि मेरा ऐसा ही चलेगा, क्योंकि माता पिता ने बहुत अच्छा की है।
1: ये तो है जी। पहले तो बच्चे आवाज भी नहीं उठाते थे, आप जानते हो, जब भी हम जो है माता पिता बोलते थे ट्यूशन जाना है, और जहाँ भी हम, मुझे तो याद है मेरी माँ तो कभी सब्जी बेचते बेचते वो कहीं साई राम का जो भी भजन कीर्तन होते थे तो वो मुझे भले ही वो बैठ कर काम कर रही हैं पर मुझे वहाँ भेजती थी कि यहाँ पर मैं बैठूँ, तुम वहाँ जाओ।
0: सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ
1: जी।
0: अभी हम लोग जाते हैं मंदिर या किसी सत्संग में तो बच्चे को नहीं ले जाते हैं,
1: नहीं ले जाते
0: हैं। बोलते हैं उनको वो देख टीवी देखनी है या गेम खेलना है या मतलब ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन करना है, नहीं ले जाते हैं, माता पिता खुद स्वयं चले जाए तो बच्चे में संस्कार कहाँ से आएगा,
1: कहाँ से आएगा।
0: देखिए हम मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में हम क्यों, जब मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम उसकी धरती को छूकर अपने माथे पर क्यों लगे, इसके पीछे एक रहस्य है कि पता नहीं कौन से संत कौन के महात्मा की धूल है जो आप अपने मास्टर

0: पर लगाएंगे तो आपकी बुद्धि सुधर जाती है पिताजी, इसलिए हम लगाते हैं कि पता नहीं कौन से संत के चरण पड़े होंगे, जब हम छूकर अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है
1: कल्याण हो जाता है,
0: उसमें बहुत लाभ है, हानि नहीं है बिल्कुल। लेकिन अभी तो बच्चे जाते ही नहीं ना, जाते भी हैं तो मतलब वो ध्यान लगाकर सुनते भी नहीं है, क्या
1: सुनते
0: करें?
1: नहीं। और एक बात है वीना जी कि जब आप ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर बोलबाला भाषा की जो भी है प्रचार हो रहा है, तो भले ही आपके अंदर कुछ गुण है, कुछ कला है, कुछ हुनर है, तो आप नहीं जानते हो, जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर की जो गुणता है वो बाहर आ जाता है और आप जान जाते हैं कि आप किस में किस चीज में अच्छे हो।
0: हाँ, किस में आप पारंगत है, मतलब किस में आप ज्यादा दक्ष है जैसे बोलते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल है, किस में आपकी कमी है, आपकी कमी भी दिखाई दे जाती है और आप में जो है वो भी दिखाई, तो ये सब सत्संग के माध्यम से ही होता है। संस्कार कैसे आता है? सत्संग के माध्यम से आता है
1: जी।
0: तो अभी के तो कहाँ करते हैं सत्संग, घर में भी घर से शुरू करना चाहिए, यज हवन मायन पाठ रोज करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, एक चौपाई गवाना चाहिए। देखो अभी सभी मॉरिशस में ये हो रही है कंपटीशन प्रतियोगिता आदि, अच्छा है, लेकिन तो बच्चे को उच्चारण आदि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने तो मात खा खा कर सीखा है और जो कुछ सीखा है तो आज तो हमें कैसे बोलते हैं कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है और अच्छे गुरु के साथ भी सीखा है और माता पिता ही तो प्रथम गुरु थे, उनसे हमने सीखा है। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत बड़ी विदुषी हूँ, नहीं, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ, जितना भी, तो सही सही मैं बोलूंगी, किसी को मैं बरगलाऊंगी नहीं, जैसे कि कैसे बोलते हैं कि ऐसे ही बोल दिया पागा बोल, नहीं, सही मैं बोलूंगी। तो ये प्रार्थना है जितने लोग सुन रहे हैं मॉरिशस भर में, सभी को ऐसा ये करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान सुसंतान बने, कोई कहीं बुरे मार्ग पर न चले, तो आप उनको जरूर संस्कार देवे, यही मैं कहूंगी पूजा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या,
0: इसी तरह
1: धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर जो है समाप्त हुआ और आज हमने इस पर बात की कि जो हमारे संस्कार हैं वो कभी पुराने नहीं होते, और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी।
2: हम

श्रोताओं, संस्कार जो हैं कभी पुराने नहीं होते। मैं निवेदन करूंगी कि सभी जो बच्चे हैं वो बैठ कर जाएं, पढ़ें, लिखें और अपने दादा दादी नाना नानी जो भी बड़े हैं आपके परिवार में, उनसे आप समय बिताएं। आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सिखाएंगे। कुछ लालच नहीं, परंतु ज्ञान की जो प्यास है वो हर बच्चे में हो, बस यही आशा है। क्योंकि ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है। और ये जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो दादा दादी सुनाते हैं, ये बड़े ही रोचक होते हैं और साथ साथ इनमें संस्कार भी बड़े होते हैं। इससे इस जो जो भी कहानियाँ हैं, जो सीख मिलता है अंत में,

वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ देंगे। जब भी आप फंसेंगे, कुछ भी मुश्किलें आएंगे, समस्याएं आएंगे, तो यही संस्कार, यही कहानियाँ याद आएंगे और आपको कुछ ना कुछ से निकाल ही देंगे। तो चलिए, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत के बाद हम बढ़ेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर।

सुनो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

सबको के नमस्ते और ई प्रणाम तोहार पसीन कार्यक्रम में सबको के हमनी दिल से स्वागत करत हैं जा और तोहरे पसीन के गीत हमनी चलावब जा खाली चाहेला टेलीफोने करे के 4028085 पर 4985 पर रेडियो मॉरिशस के लहरों पर हमनी तोहार पसीन कार्यक्रम जारी बातें और जैसे जानेला कि एगो जन्मदिन होवेला नए तो एगो खास जुनहा परिवार खातिर एगो सदस्य खातिर चाहत हवा गीत जन ओकरा डेडिकेट करे के ओकरा भेजे के नहीं सकत हवा कुछ बोले लब्ज में त उ सगबा जाए को गीत के माध्यम से ही बोली तो चला अभी जन बायदिला जन हमनी के सुनत हवन जा ओकर सब परिवार खातिर र सुना नयान जी के गावल गीत खाले पीले जिले भैया ये तो सचे है चाहे ला खाए के जिए के जिंदगी व खाली दू ही दिन के है चाहे ना नीमन से जिए के सबसे प्यार से जिए के तभी सगबजा एगो नीमन जीवन ले जाए।

जानेला हमनी के भाषा जहाँ तहाँ हमनी जायला सा हमनी के भाषा हमनी के संस्कार हमनी के साथ हुए जाला तैसने हुए हमनी के बरजना लोग हमनी के पुरनिया लोग जब वो लोग आल रंजा था ढेर सारे संस्कार ढेर सारा जुन गीत बाते जुन कहानी रहल वो लोग के तो हमनी के ऐसने हुए सिखावे और वो लोग के याद बाते और अभी जुन हा चिपाके से लेखराम जी हमनी के सुनत हवन जा अपन पत्नी जुन हा देवी जी और सभी ओकर परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते और हमने अभी पितृपक्ष के जुन समय में है सा सब कोई जुन अपन पूर्वज लोग के याद करत हवन जा तो लोग के याद खातिर ई गीतवा के मांग कर ले बाते और हमने के पूरे टीम खातिर भी है गीतवा के मांग कर ले बाते तो बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा और जे कोई हमने के सुनत हवन जा सक बजा हमने के टेलीफोने करे 4028085 पर 4280985 पर नहीं तो 5251 007005 पर सक बजा हमने के मैसेज भेजे तो चले अभी धोती पोती पगड़ी और ई गीत विक्रम कुलाचंद जी के गावल है तो चले है गीतवा हमने सुनी ना सा और जे कोई ई गीतवा के पसंद करे लंजा तो चले ओकर आनंद उठावा।

जानेला जब एगो मृत्यु होवेला त हमनी के जीवन में एगो मान ल एगो दुख छा जाला। ऐसे हुए जब एगो लड़का के जन्म होवेला त हमनी के घर में खुशियाली भर जाला और ओकर लड़का के किरकारी से जब वो रोवेला जब वो हंसेला तो ओकर किरकारी से ही घर में मान लो

0: खुशियाली छा जाला। का ओकर नाना ह, का ओकर नानी ह, का ओकर दादा दादी ह, सब परिवार के सदस्य बड़ी खुशी, जैसे एगो कृष्ण जन्म हो जाला। ऐसने हुए हमनी खुशहाली मनायला स। तो हमने के भोजपुरी भाषा में हर प्रकार के गीतों बाते, ललनाओ बाते, तो इ ललना के गीत की मांग कर ले बाते कमला जी काकोको के हवन जा और उकर बेटा वीश और दीक्षा उकर माँ और दादी दादा संजय दादी कविता वो लोग के घर में गो छोटा बाबू आल बाते तो उकर स्वागत खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते है। ये गीतवा काजल जी के घरों में गो छोटा नन्हा सा कृष्ण नाल बाते तो चला उकरो खातिर है गीतवा हमनी चलावत हैं जा। और हमनी के जोन हा दिली चिंतामणि जी कौन लीला से हमनी के सुनत हवन जा और उकरो घर में एगो नीमन से और बड़ी छोटा से और सुंदर सी जोन हा नन्ही परी आल बाते तो ओकर खातिर वो है गीतवा हमनी चलावत हैं जा। तो ओकर माँ बाते वरुणा और ओकर पिता बाते अमित और साथ में बाते उदय और प्रीति वो लोग के घरों में गोनी मन से और बड़ी सुंदर से छोटा बाबू आल बाते तो वो लोग खातिर रहा गीतवा बसंत जी के गावल गीत। तो चला हमनी ये गीतवा सुनी रहा सा और जे कोई हमनी के सुना था वन जा सक बजा हमनी के टेलीफोने करे 4028085 पर नहीं तो 2 53 7005 पर सक बजा हमनी के मैसेजों भेजे।
1: कैसे के दादा दादी लोग अभी आवत हो जा, अगर नाना नानी कब से बैठल बा, थरिया आना जा हो थरिया थरिया।

रात त नहीं बा, अभी तोहर पसंद कार्यक्रम चलता और ऐसा कार्यक्रम में गमट के गीत नहीं चली तो नहीं अच्छा लगी ना। तभी है गीतवा के मांग कर ले बाते नानी जी, नानी सुखलाल जी और सुनत हवन जा ओकर सब बेटी खातिर, दमाद खातिर और हमनी के एम्बेसी टीम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी और गीतवा खास तौर पर निरूपा जी खातिर जो हमनी के सुनत हवन जा और छोटका लड़का खातिर गीतवा के मांग कर ले बाती और सपने उदय सिंह परिवार खातिर, ओकर पति पवन सिंह खातिर और ओकर सास खातिर है गीतवा खास तौर पर। चला नाचा गावा खाली कहे कि ई तो हर पसंद कार्यक्रम बाते जहाँ पर ही खाली गमट हुए के गीत चलेला। और गीतवा खास तौर पर वीना रामफुल जी, श्यामा रघुनंदन जी, आशा जानू जी और सब जानू परिवार, चित्रा जी, मौदालबिया से हमन जा,

तो राधा जी नाचा थवन जा और ई गीत पके मांगल ले बाती विमला जी और अमृता जी खातिर खास तौर पर सुनीता जी गौगोप से हमनी के सुना थवन जा तो ई गीत खास तौर पर उकर दोनों बहनन खातिर है गीत पके मांगल ले बाते तो चला अभी एगो जन्मदिन के गीत शांति जी हवन जा कुतेज से ओकर नतीन जुन्हा ओकर नतिनिया के जन्मदिन बाते श्यामा नानी के देने से ओकरा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बाते मानोज हमदत्त जुन विलमय के हवन जा और ओकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं देवत हम जो सब संगतिया लोग बाई सुदु और रमोक प्रदीप और ओकर परिवार देने से ओकरा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं खास तौर पर प्रीति रंजीत जी के देने से और जे कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई के MBC के देने से सब कोई के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: हये त चाहेला 100 साल एक जिए के निमन से रहबा तंदुरुस्त रहबा हये जुन ह कामना चाहेला करे के
1: साल जिया दीदी 100 साल जिया जीजा
0: जो कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई के एमबीसी के देने से सब कोई के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तही देखा संगत करा जान के पानी पिया छान के ये सच्चे बात है। जे कोई के फ्रिकाउंटे करवा ना तो चाहे ला जाने के वो आदमी वा कैसन बा नहीं तो फंस जाएगा
1: संगत करा
0: ना गीतवा के मांग कर ले बाते अशांति जी शांति सुकारी जी और उनका सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते खास तौर पर रजा जी जो न अभी टैक्सी चलाते चलाते हमने के सुना था वंजा।

तो चला कामियों लो तो गीतवा के मांग कर ले बाते इंद्र रावती शिवराम जी और खास तौर पर गीतवा और सब परिवार खातिर गीतवा के मांग कर ले बाते और साथ में

शोभा जी हवन कथो बोन से सुनत हवन जा, हमनी के शोभा जी वाकवा से भी हमनी के सुनत हवन जा, देवी जी हाईलैंड से हवा ना, बस आंटी जी ओकर खातिर रा, गुबासा से हमनी के सुनत हवन जा।

जान गई ला ना ई सुना नु यान के गाँव वाल गीत बोल दिल वाला हमर नाम है सोना कमट करे के होशियार बते दिमाग के दिन में जोन पकैले हवा एगो गोजिना पी ले बा बस ते गीत के मांग ले बाती सुना ना चिरंगी जी बड़का फैन बाती सुना नु यान की और साथ में इंद्रावती शिवराम जी और इंद्रानी जी वाकवा से हवन जा सभी चतागु परिवार खातिर

उषा जी हवन जा हाईलैंड से सुनत हवन जा ओकर खातिर साथ में त्रिवेणी जी चित्रा जी जुन सुनत हवन जा और नवीन लक्ष्मण जी ओकर पत्नी खातिर रा कमला जी छोटी प्यारी सी आरोही खातिर रा

फजीरे फजीरे जब पानी नहीं गिरेला तो खीस भरेला ना। हाँ हमरो खीस भरेला। हाँ ये तो पानी नहीं बा गीत वाके मांग कर ले बाते गीता जी पोफ ऐसे। और ये गीत खास तौर पर रुकर बेटे बेटे खातिर रा उकर बेटा बाते तीन और तीन पतो बाते आरव आदित्य तनिषा जानवी खातिर और हमनी के पूरे एमबीसी टीम खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते तो बोल दीनी ना अब दिमाग ने खयन जा तो गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के टीम खातिर है गीतवा फरमाइश करे के। और जे कोई जन है लाइन नहीं मिलल बाते वो लोग खातिर है गीत पर हमने चलावत हैं जा इंदिरा लौतन जी सुनत हवन जा कर सब परिवार लंदन से हमने के सुनत हवन जा और ऊ मादालविया से सुनत हवन जा और सब परिवार खातिर है गीतवा की मांग कर ले बातें।

तैहूर से सुनीता जी शोभा रामचंद जी के गावल गीत के मांग कर ले बातें तो कर सब परिवार खातिर और जे कोई के लान नहीं मिलल बा वो लोग खातिर है गीतवा हमनी डेडिकेट करा था इंजा तो एक वे संगी हमनी तो हर पसंद कार्यक्रम के अंत तक चलाल है इंजा और जितना कोई कार्यक्रम में भाग ले लन जा गायत्री जी नुवेल फ्रांस से हवन जा हमनी के सुनत हवन जा रेहाना जी हाईलैंड से सुनत हवन जा और ललिता कुशल जी त्रियोले से हमनी के सुनत हवन जा का सब कुशल परिवार के नाम पूजा का अनुमति द हमार दिने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: रविवार 27 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रॉपिकल इलाके में तैयार हो रहा एक ध्रुवीय जहाज कैप्टेन ऑटिक इन दिनों पोर्टली में अंतिम रूप ले रहा है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में बन रहा ये नई पीढ़ी का अन्वेषण पोत ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा के लिए तैयार किया गया है। एमएमएम ने आज गिजवी में अपनी स्थापना के 57 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आर्यन नवामागी सहित पार्टी के नेताओं ने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र जैसे मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ओजेम्पिक वेगोवी और मुंजारो जैसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये दवाएं मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए दी जाती हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सलाह और कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना चाहिए। और विदेश में उत्तर पूर्वी अमेरिका में शक्तिशाली तूफान से तटीय बाढ़, बिजली कटौती और यात्रा में भारी बाधा आई है। खराब मौसम के कारण स्टेडियम के कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ट्रॉपिकल इलाके में तैयार किया जा रहा एक ध्रुवीय जहाज, यह लगभग असंभव लगने वाली परियोजना इस समय पोर्टवी में आकार ले रही है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में कैप्टेन ऑटिक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये नई पीढ़ी का एक अन्वेषण पोत है जिसे ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा करने के लिए तैयार किया गया है। आइए शहजाद अली जुमन के साथ जानें इस विशाल समुद्री पोत की कहानी जो मॉरिशस में निर्मित हो रहा है। विवरण गीता सुनारायण के साथ।
1: पिछले 25 साल से पोर्टरिस में स्थित शौचे नवाल डे लुसियां दुनिया भर के ग्राहकों के लिए जहाज बना रहा है। इसमें खास तौर पर रक्षा, औद्योगिक मछली पकड़ने और ऑफशोर परिवहन के क्षेत्र शामिल हैं। यहां इससे पहले कभी

0: ऐसा जहाज नहीं बनाया गया था। कैप्टन आर्कटिक दुनिया के सबसे आधुनिक खोजी जहाजों में से एक है, जिसे लगभग बिना प्रदूषण के समुद्र में चलने के लिए तैयार किया गया है। शांचे नावल डे लुसियन एजे लिमिटेड के उप महानिदेशक निकोला पेरिये कहते हैं,
1: C'est un bateau révolutionnaire où nous sommes très très fiers de le faire parce que ça représente pour nous 450 000 heures de travail.
0: ये एक आधुनिक जहाज है, इसे बनाकर हमें गर्व है। दुबई से इसके ढांचे आए हैं, नवंबर में ये यहां आया, अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में डिलीवरी करेंगे।
1: Et donc elle est arrivée au mois de novembre mais on le livre normalement vers la fin octobre entre la fin octobre et début novembre dépendant des essais.
0: इसका राज है 5 विशाल कठोर सोलर सेल्स जो फिलहाल नीचे रखे गए हैं। इन्हें खड़ा किए जाने के बाद हवा और सूरज की ऊर्जा इसके इंजन्स को चलाएगी। डेविड डोमासो कहते
2: हैं,
0: दुनिया में पहली बार इस तरह का जहाज बनाया गया है। ये इकोलॉजिकल है, इसमें सोलर पैनल्स हैं, लकड़ी और कार्डबोर्ड से इसमें गर्मी पैदा होती है। निकोला पेरिये कहते हैं, कार्यों का संचालन एक मुख्य चुनौती थी। मॉरिशियन कामगारों और विशेषज्ञों के साथ इस परियोजना को विश्वास के साथ पूरा किया। इस फ्रांसीसी जहाज का ऑर्डर सेला नाम की शिपिंग कंपनी ने दिया है। अब तक 40 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी कर चुके सीएनओई को अपनी अच्छी प्रतिष्ठा और काम के अनुभव की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। निकोला पेरिये कहते हैं, ये एक आधुनिक जहाज है, दुनिया में इस तरह का ये पहला जहाज है। मॉरिशन विशेषज्ञता मजबूत है, बड़ा कार्यदल है जो सबसे बड़ा निवेश है।
1: एलिवेटर आसंग मोबिल कि ले प्लू पुइसान औ मोंड कि पे लेवे 1500 टन दे चार्ज यूटिल मे ले प्लू ग्रोस इन्वेस्टिसमेंट ए ह्यूमन वूस अले वोर एन फेजान ले टूर डू बातो आ केल पॉइंट ले सावर फेयर मॉरिशियन ए फोर ए ग्रैंड।
0: कैप्टन आर्कटिक की लंबाई 70 मीटर है और इसमें 36 यात्री तथा 24 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। टेक्निक का ये शानदार नमूना यात्रियों को उत्तरी ध्रुव क्षेत्र तक ले जाने के लिए बनाए गए इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि समुद्र में इसके उत्सर्जन को न्यूनतम रखा जा सके। एक ऐसी उपलब्धि जिस पर इसे तैयार करने वाले कामगारों को गर्व है। मॉरिशस के कामगारों के हाथों तैयार हो रहा है। जोनाथन सामची को कहते हैं, शुरू में जटिल था पर बाद में सभी कामगारों ने मेहनत की ताकि इसे पूरा किया जा सके। जॉन एरिक डेसिरे कहते हैं, कम अवधि में सभी लोगों ने मिलकर इसे पूरा किया। हमारी भूमिका ये आश्वस्त करना है कि कोई दुर्घटना न हो। कैप्टन आर्कटिक की डिलीवरी इसी साल होनी है। जल्द ही मॉरिशस में जन्मा ये जहाज आर्कटिक की बर्फीली दुनिया की ओर अपना सफर शुरू करेगा।
3: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन यानी कि एमएमएम ने आज रेजुई में अपने 57 वर्षों के अस्तित्व का जश्न मनाया। दल के नेताओं जिनमें अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आरियान नावामारी भी शामिल थे, उन्होंने उपस्थित समर्थकों को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि एमएमएम आज भी अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, जिनमें राष्ट्रीय एकता, योग्यता के आधार पर अवसर और लोकतंत्र के प्रति सम्मान शामिल है। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
0: एमएमएम के पहले कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी की अगली पीढ़ी, जोश और उत्साह के साथ साथ संस्थापक सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन यानी एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के इतिहास को याद किया गया। एमएमएम के अध्यक्ष गिजा उद्दीम ने पार्टी के सफर पर प्रकाश डाला।
4: Contre la venue de princesse Alexandra, la police s'y arrête un certain nombre de dirigeants de clubs des étudiants militants. Par la suite, ils ont fini créer le MMM, où les mots symbolisent l'équerre. Telle partie dans Maurice qui finit gagne 3 élections générales, 60-0. Nous, seule partie dans Maurice qui, depuis l'indépendance, depuis qu'ils nous créent, depuis 69, toute élection qui finit, finit au moins

एमएमएम की युवा शाखा के अध्यक्ष दृश बाबूलाल ने पार्टी के भविष्य पर बात की।

0: अहम मोड़ पर खड़ी हैं।
1: Nous dans le gouvernement parce qu'ils ont envie de travailler pour nous pays, nous militaires et même. Parce que ça mérite sa considération-là. Nous, le résident du gouvernement, pour militer pour eux, pour travailler et pour terminer ce programme-là.
0: पार्टी की उपनेता आर्या नाबामारी ने एमएमएम के मूल्यों को अपने भाषण में प्रमुखता दी।
2: L'unité nationale n'est pas une option. Il y a une responsabilité, il y a un devoir. Nous en vivons l'île Maurice que nous pouvons continuer et dans la justice sociale, le respect de la démocratie et ben institution. En l'île Maurice que pour une égalité hommes-femmes. Pour le MMM, ça va valer là, n'est pas une option. Il y a un devoir, il y a une responsabilité.
0: सभी वक्ताओं के अनुसार सितंबर 1969 में युवा आदर्शवादियों द्वारा बनाई गई एमएमएम ने अपने सफर में कई बड़े दौर देखे हैं, कुछ गौरवपूर्ण तो कुछ मुश्किल भरे। उनका कहना है कि एमएमएम आज भी अपने मूल्य सिद्धांतों पर कायम है। इस तरह पार्टी की 57वीं वर्षगांठ कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और उनके विश्वास का जश्न मनाया गया।
3: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शनिवार 26 सितंबर की शाम को लंदन के लिए देश से रवाना हो गए। वे यूनाइटेड किंगडम की अपनी इस यात्रा के दौरान शागस मामले पर उच्चतम स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे, विशेष रूप से मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित नवीनतम विकास पर बातचीत करेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस मामले पर मुख्य वार्ताकार जोनाथन पावल के साथ उनकी बैठकें होंगी। उन्हें द्वीप समूह पर मॉरिशस के साथ बातचीत के लिए ब्रिटिश सरकार के विशेष दूत भी नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नाबामारी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। दुनिया में मीठे पानी के भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं और वर्ष 2025 पिछले 3 दशकों से अधिक समय में सबसे सूखे वर्षों में से एक रहा। ये निष्कर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित दुनिया के जल संसाधनों की स्थिति पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आया है। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। इसका उदाहरण हमारा मुख्य जलाशय मोगवाक्वा है, जिसमें पानी का स्तर नवंबर 2026 के अंत तक घटकर 20% के गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। वह 32 वर्ष की थी, वह गन्ने के खेतों में काम करती थी और अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। 27 सितंबर 1943 को बेल्वी आगल में हड़ताल कर रहे श्रमिकों के एक जुटाव के दौरान अंजलि कुपेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका नाम श्रमिक आंदोलन के इतिहास और श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई से हमेशा जुड़ा रहेगा। उनकी मृत्यु के 83 वर्ष बाद मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन ने पोर्टली में उनके स्मारक के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति को जीवित रखने का संकल्प दोहराया। सांताना पोस्नो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
4: मॉरिशस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती बनने से पहले अंजलि कुपेन गन्ने के खेतों में काम करने वाली एक आम महिला थी। 1911 में रिविया जोंपा में जन्मी सुंदरम पावतन बाद में बेल्वी आगल में बस गई, जहां उन्होंने खेतों में मजदूर के तौर पर काम किया। सितंबर 1943 में बेहतर वेतन और बेहतर कार्य शर्तें जैसी कई मांगों के साथ शक्कर कारखाने के मजदूर हड़ताल पर गए। 27 सितंबर को प्रतिष्ठान के मजदूर एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए। तनाव बढ़ा, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और गोलियां चली। मात्र 32 साल की अपने प्रथम बच्चे के लिए गर्भवती अंजलि कुपेन की गोली लगने से मौत हो गई। घटनास्थल पर ही और दो लोगों ने जान गंवाई और कुछ दिनों के बाद घायल हुए एक

0: चौथे मजदूर की भी मौत हो गई। इस वारदात ने देश पर गहरा असर किया। जूनियर मिनिस्टर राजन नौसिंगन कहते हैं, ये महान महिला मॉरिशस की हैं और पूरे मॉरिशस को, विशेष रूप से तमिल समुदाय को उन पर गर्व होना चाहिए। अंजलि कुपेन धीरे धीरे मजदूरों के संघर्ष और उस दौर के सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई और आज तक कई जगहों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। 27 सितंबर 1943 को जान गंवाने वाली इस महिला की याद में पोर्टलुई में एक स्मारक बना है। मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष दौसेन गंगादू कहते हैं, अंजलि कुपेन मजबूती का प्रतीक है। उनके संघर्ष पर कई लेख लिखे गए हैं। मैं नौजवानों से उन्हें पढ़ने की मांग करता हूं ताकि वे सही मायने में एक कामगार की लड़ाई को जान सकें। वे मात्र एक तमिल महिला नहीं बल्कि प्रथम मॉरिशन स्त्री थी जिन्होंने मॉरिशन श्रमिकों के लिए संघर्ष किया था ताकि उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो। ये दिन उस महान महिला के साथ साथ उन सभी अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका है जिन्होंने बेहतर कार्य शर्तों और उचित सम्मान के संघर्ष में अपनी जान बाजी पर लगाई थी।
1: कई भाषाओं में प्रार्थनाएं, दूर दराज से आए गीत और कई महाद्वीपों के रंगों में रंगी एक चर्च पाम्पलमुसेस के सैं फ्रांसवा दासीज में मॉरिशस के लोग और इस द्वीप पर रहने तथा काम करने वाले विदेशी इस रविवार को मोंसेनियर जो मिकाएल जुरन के साथ एकत्र हुए। ये उत्सव 112वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसे इस वर्ष प्रवासी और शरणार्थी बच्चों के नाम समर्पित किया गया है। साहा ओनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
0: अलग अलग शब्द लेकिन प्रार्थना एक ही। इस रविवार पोम्पलुसिस के सैं फ्रांसवा दासीज गिरजाघर में भिन्न प्रकार की जिंदगी जीने वाले लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थनाएं की। मलागासी, कमेरूनी, नाइजीरियाई, भारतीय, ये लोग आज मॉरिशस में रहते हैं और काम करते हैं। इस प्रार्थना सभा में हर एक अपने देश का एक हिस्सा साथ लाया।

मलगासी कामगर कहती है, मैं वाकवा में रहती हूँ, वहाँ सभी परिवार की तरह रहते हैं। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इसके साथ ही व्यापारी भी अच्छे हैं। केरला मूल के नागरिक कहते हैं, मॉरिशन लोग अच्छे हैं, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम यहाँ सभी के साथ मिलकर रहते हैं। नाइजीरियाई मूल के नागरिक कहते हैं, मेरा यहाँ अच्छा स्वागत हुआ है, लोग भले हैं, लेकिन हमें कभी कभी अपने देश की याद आती है, खासकर वहाँ के लोग और खान पान। इस सभा ने उन सभी की पहचान उजागर की। ये पहल एक बहुभाषी टीम की रही। प्रार्थनाओं के दौरान अलग अलग भाषाओं में पाठ, भजन और प्रार्थनाएं हुई। बच्चे भी इसमें शामिल हुए। ये मौका रहा अपनी मातृभाषा में प्रार्थनाएं करने का। इन आवाजों ने उस विषय को दोहराया जिसे पोपलियो 14 प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के लिए चुना है, यानी इनमें से एक बच्चा भी। ये आंकड़े से आगे देखने और उन नाबालिगों के चेहरों और कहानियों पर ध्यान देने का आह्वान है जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, कभी युद्ध, कभी गरीबी तो कभी हिंसा के कारण। मॉरिशस के बिशप जॉन मिकाएल जॉन ने कहा, जब बड़े एक जगह छोड़ते हैं तो अक्सर बच्चों को भी साथ जाना पड़ता है। कभी कभी यहाँ जब उन बच्चों की दस्तावेजें नियमित नहीं होती तो वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन कानून कहता है कि अगर किसी अभिभावक के पास जरूरी दस्तावेज न भी हो तो उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। अप्रवासी भी इंसान होते हैं, हम भी अलग अलग जगहों से आए हैं तो हम भी एक तरह से अप्रवासी हैं। इसके अलावा कई मॉरिशन परिवार के सदस्य भी विदेश में बसने जाते हैं। मॉरिशस में भी आप्रवास कई रूपों में मौजूद हैं। विदेशी कामगारों के सफर के पीछे एक कहानी, एक संस्कृति और कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर पीछे छूटा हुआ परिवार होता है। पोम्पलेमोसिस में लगी इस प्रार्थना के अंतर्गत सरहदें कुछ हद तक धुंधली हुई।

0: ओजेम्पिक, विगुवी या फिर मुंजारो, सितारे और अन्य इन्फ्लुएंसर्स इन इंजेक्शन के वजन घटाने वाले गुणों का बखान करते हैं, जिन्हें आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है। वे इन दवाओं का इस्तेमाल भूखे दबाने वाली दवा के रूप में करते हैं, जिसके दिखाई देने योग्य परिणाम भी मिलते हैं। केवल डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर मिलने वाली इन दवाओं का इस्तेमाल सख्त मेडिकल निगरानी में किया जाना चाहिए। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: मॉरिशस में हाल ही में उपलब्ध हुई दवा ओजेम्पिक में मुख्य रूप से GLP-1 नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ब्लड शुगर तथा भूख को नियंत्रित करने में मदद देता है। ओजेम्पिक में इसे अधिक मात्रा में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। मेडाक्टिव की फार्मासिस्ट हेमानंद कुसिरतन कहती हैं, ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। ये खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दिया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और मेडिकल फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल मोटापे के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें शरीर के वजन में 16% तक कमी आने की संभावना होती है। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं पड़ता, दिल के लिए भी ये अच्छा है, खासकर जिन्हें दिल की परेशानियां होती हैं। ये किडनी के लिए भी अच्छा है। किस मरीज को और कैसे ये देना चाहिए, ये जानना जरूरी है। दुनिया भर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सौंदर्य और शरीर का वजन कम करने के लिए भी किया जा रहा है, और किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, साइड इफेक्ट्स में खासकर पाचन की समस्या हो सकती है। कुछ मरीज मसल्स खो देते हैं, इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। ये दवाई का असर नहीं बल्कि तेजी से वजन घटने का असर है। अगर डायबिटीज या दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखी गई, ध्यान नहीं दिया गया और जब इस दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो ये खतरा पैदा होता है। इलाज बंद करने के बाद दोबारा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है और कम किए गए वजन का 60% तक वापस बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज कराना बहुत ही जरूरी है।
0: पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अवधि है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार यह आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस साल 27 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। विधिमा सिबरन की रिपोर्ट।
2: पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। आम भाषा में इसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक इस परंपरा को माना जाता है। मान्यता है कि हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे पितृ अपने परिवार के साथ पृथ्वी में वापस आते हैं और उनके लिए किए गए तर्पण और श्राद्ध को वे स्वीकार करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
3: जो लोग बड़े बुजुर्गों का वंदन, पूजन, पाठन करते हैं, उनकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये चारों के चारों चीज़ें बढ़ाने के लिए पितृपक्ष हमारे सामने हमारे क्रांतिद्रष्टा ऋषियों ने दिया है। हम इसमें पितरों का पूजन करते हैं। उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं है, बस आटे का, जौ के आटे का या चावल

0: का पिंड बना करके पिंड को रख करते हैं, उसमें पितरों को बुलाते हैं, जो कुछ हमसे भोजन बनता है भोजन सामने रखा, पितरों को प्रणाम किया, पितर आए, उन्होंने भोजन इत्यादि ग्रहण किया और आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर फलता फूलता है, उस घर में समस्याएं नहीं होती हैं। जहाँ पितरों का प्रकोप होता है, जहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है, वहाँ विकास रुक जाता है, कभी कभी तो वंश की वृद्धि भी रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है पितर के श्राप से। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे लिए 15 दिन का समय है कि हम 15 दिनों में पितरों का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
1: 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसके बाद किए जाने वाले पितरों, श्राद्ध और पिंडदान विस्तार से बताया गया है। इन दिनों में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में नए कपड़े, आभूषण या संपत्ति खरीदना और किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है।
2: शिमगिरी में बाजार की अब एक नई जगह है, एक बिल्कुल नया भवन जो दक्षिण के इस हिस्से के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को रोज स्वागत करता है। सब्जियां, फूल, कपड़े, खाद्य उत्पाद, ये मंडी यहाँ काम करने वाले लोगों को अधिक जगह और सबसे बढ़कर बेहतरीन स्थिति प्रदान करना चाहता है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी अमेरिका में करोड़ों लोग एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में हैं, जिसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़, बिजली कटौती, यात्रा में भारी बाधा और स्टेडियम के कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाला है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, कल सुबह पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर बादल घेराएंगे और वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:07 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:54 पर।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

अयशोक समाचार सुनते हैं। Chemin du Verga, Glenpark Vaquame, Chemin du Verga, Glenpark Vaquame, 77 साल की, 77 years old की, श्री बाला सुब्रमण्यन पाती, श्री बाला सुब्रमण्यन पाती, जिन्हें सब लोग किसना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती जेंसी पाची के घर Chemin du Verga, Glenpark Vaqua से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Solferino Vaqua की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नातुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड्स में 67 साल की 67 years old की

0: श्रीमती स्वस्ति पुरेसा, श्रीमती स्वस्ति पुरेसा, पैदाइशी नाम पुनाई, और जिन्हें सब लोग स्वस्ति मदन कोंगो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मनेश्वर पुरेस के घर नातवा रोड थ्रियोंगला गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। क्लियाफोन नंबर दो वाकुआ में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्री श्याम गजादव, जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे उन्हीं के घर क्लियाफोन नंबर दो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रोड मोफेयर चिल में जो स्नो वाइट सुपरमार्केट के पास है, 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्री जन्मजय मुतुजी, जिन्हें सब लोग गासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री गजन मुतुजी के घर रॉयल रोड मोफिया चिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की श्मशान भूमि ले जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। सुभाची रोड बुनाकोय में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री रविन जमना, जिन्हें सब लोग मुनु के नाम से भी जानते थे, और जो NTC के पूर्व चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती दीपा किसुंदेया जमना के घर सुभाची रोड भुनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। और महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती गुलजा, पैदाइशी नाम काउल, और जिन्हें सब लोग मामा सुदेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उन्हीं के घर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी रोजहिल के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती है। एवेन्यू मद्रास, एवेन्यू रासितातान का एक भाग, एवेन्यू क्रेटिन, एवेन्यू सिरियस, एनएचडीसी साइट एंड सर्विसेज और आसपास के इलाकों को के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 28 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी इन सभी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी इन असुविधाओं के लिए अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

see it. Go see it.

三十分钟的音乐之旅，今天就到这里，下次再会。

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: भजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, सुंदर भजनों को जब हम सुनते हैं तो मन उस प्रभु में रमने लगता है। उसके गुण, उसने जो कार्य पूरे किए, वह सब कथा कहानियाँ हमारे दिमाग में चित्र की तरह उतरने लग जाती हैं और धीरे धीरे हम उस प्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। जीवन में कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है, अन्यथा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अहंकार प्रभु के नाम को जपने में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए तो हिरण्यकश्यप ने सोने के कुंडल कानों में डाले हुए थे, गलती से भी नारायण का नाम उसके कान में न पड़ जाए, इतना अहंकार। और कंस इसलिए सब बालकों को मार दिया कि पता नहीं इसमें से कौन कृष्ण हो सकता है। तो श्रोताओं, ये जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति को ले डूबता है। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उनका हर पल धन्यवाद करते हैं तो मन विनय से भर उठता है, और जब मन विनयशील होता है तब भक्ति शुरू।

श्रोताओं, ईश्वर ने इस प्रकृति में तीन गुण बनाए हैं, रजस, तमस और सत्व। ये तीनों गुण हमारे भीतर हैं, लेकिन सत्व की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमस बिल्कुल नहीं होगा। कोई गलत कार्य करता है तो क्रोध आता ही है, और रजस नहीं होगा। कभी कभी हम हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन सत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तमस और रजस भी सत्व के अधीन होना चाहिए, तब वह सकारात्मक होता है। अन्यथा तमस को राक्षस बनने में देर नहीं लगती है, और रजस को भोग की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में बहुत समय नहीं लगता है। इसीलिए श्रोताओं, सत्व चेतना या सत्व तत्व की ओर बढ़ने के लिए सात्विक जीवन बहुत ज़रूरी है, और सात्विक जीवन के लिए सबसे पहले प्रभु का नाम जपना, प्रभु का नाम स्मरण करना, यह उसकी पहली सीढ़ी है। उसके बाद हमारे कार्यों में, बोलने में, व्यवहार में, खाने में, हर चीज़ में सात्विकता बढ़ती है, तब प्रभु का

इतने श्रोताओं, जब भक्त उस प्रभु के साथ जुड़ने लगता है तो बस उसका रूप बदलने लगता है, प्रभु उसे परिवर्तित करने लग जाते हैं। और यह जो परिवर्तन है, याद कीजिए, विवेकानंद जीवन ही बदल गया। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम माँ काली की उपासना करो या तुम बैठ के साधना में बैठो, लेकिन धीरे धीरे गुरु को देखते देखते विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। तो श्रोताओं, उस प्रभु से जब कोई जुड़ता है ना, तो जिंदगी बोझ नहीं बनती, जिंदगी कुछ करने की लालसा से भर जाती है। जिंदगी चाहती है कि मैं किसी की मदद कर दूं, इसमें उसको खुशी मिलने लगती है। जिंदगी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर सात्विकता को अपनाती है और अपने मन में आनंदित होती है। यह जो आनंद है ना, यह है भजले प्रभु का नाम। सुख संसार की चीज है, लेकिन आनंद प्रभु को भजने का नाम है। तो ये जो आनंद है ना, ये भीतर की वस्तु है, इसे सबको नहीं बता सकते हैं। तो श्रोताओं, प्रभु का नाम भजें और उसके साथ साथ उस आनंद को महसूस करें, उसमें डूबने का प्रयास करें, बस तब आनंद आता है, तब जीवन जीने का, प्रभु का नाम भजने का, स्मरण करने का अर्थ समझ में आता है। तो चलिए श्रोताओं, प्रभु नाम स्मरण करते करते, उसका नाम भजते भजते अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

कब्रों को इबादतगाह बनाने से मुमानियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, तुम से पहले लोग अपने अंबिया और सालेहीन की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया करते थे। खबरदार, कब्रों को मस्जिदें न बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। यह हदीस हमें अदब और हुदूद दोनों सिखाती है। किसी वली या सालेह बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत करना एक अलग मसला है, जबकि कब्र को इबादतगाह बनाना अलग मसला है। कब्र की ज़ियारत में साहिब कब्र के लिए दुआ, आखिरत की याद और इबरत हासिल की जा सकती है, लेकिन नमाज और इबादत अल्लाह ताला ही के लिए है, और कब्र की तरफ नमाज पढ़ने या कब्र को इबादत का मरकज बनाने से बचना चाहिए। मुहतरम सामीन, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं, और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और खुदा हाफिज़।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:09 हो गल बा। नमस्कार प्यारे श्रोता लोग, उषा के सप्रेम नमस्कार स्वीकार कर जा। रात्रि के 9:00 बातें और उस समय चलाल तुहर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त बोले लन जा कि 9:00 त मान ला ओ लोग के दिल में भोजपुरी तड़का बज गए। इतना ही प्रोग्राम के शौकीन हो जा। चलन नंबर वा मिला ल का सौदे का थोवे का थोवे सैक और जी भर के गीतवन के मांग कर जा। तो हर संगे रब जा रात के 11:00 ले त चला भोजपुरी गीत किशोर खिमिया के गावल गीत पोपूही सुना जा। और गाना उन सभी लोगन खातिर जो ही बखत काम करता।

सुनवा कौन मो बिलेट फो बिलेट बोला था वा आज हम तोरा एक बिलेट दिया।

आज के डांस का पुता सुनवा हमार लगे तेरे को नदियों बा तो लगे कौन सी बा मॉरिशस में पानी के अभाव बा चल रही है तू

0: भोजपुरी तड़का।
1: नौ के रात के 9:32 हो गल बा, बोल रे सुगा नानी केकर संगवे जयबे। किशोर किमिया के गावल गीत भोजपुरी गीत तो हर संगे और भोजपुरी तड़का में ता खूबे गमत होएला, परंतु थोड़ा उदास होकर बतावत है कि बॉलीवुड के मशहूर विलेन सब के चहेत श्री प्रेम चोपड़ा के आज निधन हो गल। 91 के उम्र में चला ईश्वर से प्रार्थना करे सा कि उनकर आत्मा के शांति मिली।
2: राधा के शोभेला फरमान सिंधु।
1: कृष्ण उकज के गावल गीत खासकर सुदेवी जी खातिर जो न रहिला बोबासन और इवखत साथ देवता।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:43 हो गल बा। छोटा लोग हमने के दिनचर्या में भोजपुरी ना होई त कमी महसूस होला, और जब रात्रि के भोजपुरी तड़का नहीं चली था ऐसे भूजला के तो लोग से जुड़ाए हमने के सतावत बातें का करब। यही हा भोजपुरी हंगामा। तो चल श्रीमती जोन रही लासुया के बखत हमने के सुनता गीत मांगा तवंजा अपने बेटे बेटियाँ पत्तो दामाद नाती पोते खातिर। तो चले संतोष महादेव के गावल गीत मारमित में गर्म पानी।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10 बज गल बा। चला आज से पितृ पक्ष में हमने प्रवेश कर लीजा। चला हमने के पितर लोगन के श्रद्धांजलि अर्पित करी सा। यही मौका है अपन बड़े जन गुरु लोगन के सम्मान दे के ओ लोग कारण त हमने आज मकाम तक आयली सा। तो चला 10:02 हो गल बा और यहाँ पर सुदेवी जी जो हम रहिला वाक्वा गाना मांगत वंजा दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर मालेंगा के राम रतन परिवार और AM2 और RM Free रेडियो के सभी लिसनर्स खातिर।

तो वॉल्यूम हुआ चाहेला बरहाई देके तो चला अगला गीत श्वेता बाबूलाल और किशोर खिमिया के गावल गीत ओबलमा गाना खासकर अनिता जी खातिर जोन रही लाफी कॉफलक और इ बखत हमने के सुनाता जुरलबा और संगे इ गीत उन लोगन खातिर जोन गाड़ी चलावता इ बखत काम से वापस घर जातवन सा चला ये गाना तो हर नाम और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:16 भाई बहन लोग रेडियो के माध्यम से हमनी तोहर से रोज के रोज जुड़ रही लसा और रेडियो के बिना जिए के तब पर यही मुश्किल बात है। जब भोजपुरी तड़का के अपन घर में स्वागत करत हवा

चला संगत या लोगन, अगला सप्ताह में तो अक्टूबर महीना चलाए और दुर्गा पूजा भी आरंभ ही हो जाए। व्रत पूजन में तो लोग मंगल रब तो साथी लोगन मन के पवित्र केवल नवरात्रि के अवसर पर नहीं बल्कि प्रतिदिन चाहेला रखे के और रोज के हमनी के साथ MBC रेडियो पर देखे के।

चला गाना चलाते चलाते तो हर मांग पूरा करते करते थोड़ी घड़ी में 11 बज जाए, कैसे समय निकल गल पता ही नहीं चलल। एगो कहावत बाते, कितनी जल्दी ई मुलाकात गुजर जाला, प्यास नहीं बुझाल हर जा बरसात गुजर जाला, तो चला अनुमति हमके दिया जा। नमस्ते और शुभ।

पर सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ फिर से लौट के आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, ये तो एक एहसास होता है और इनमें मोहब्बत है, दोस्ती है और उम्मीद भी है और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज भी है। आज के इस प्रोग्राम में हर गीत के साथ हम लेकर चलेंगे आपको उन दिनों में जब कैसेट रिवाइंड होती थी, रेडियो का इंतज़ार होता था और हर गाना दिल से सुना जाता था। तो शुरू करते हैं यादों का ये खूबसूरत सा सफ़र सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल की निशा के साथ।

वैसे दोस्त कहते हैं वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन कुछ पुराने गाने हमें उस वक्त में ज़रूर वापस ले जाते हैं। आज भी जब कोई पुरानी मेलोडी बजती है तो दिल कहता है अरे ये तो मेरी याद है। तो आज की रात उन्हीं यादों के नाम, उन्हीं एहसासों और उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के नाम आप सुन रहे हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेलोडी जो आपके बचपन का साउंड ट्रैक हुआ करती थी। म्यूजिक म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, लेकिन एक पुराना गीत वही फीलिंग वापस ले आते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत याद को जिंदा करते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे दोस्तों, आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना सॉन्ग है जो सुनते ही मम्मी पापा याद आ जाते हैं, या कोई ऐसी

वैसे आज प्रेजेंट से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उन दिनों में जब एंटरटेनमेंट का मतलब रेडियो कैसेट और रिकॉर्ड

प्लेयर हुआ करता था। जब एक फेवरेट सॉन्ग के लिए पूरा दिन इंतजार होता था, वो सिंप्लिसिटी, वो एक्साइटमेंट और वो म्यूजिक, सब कुछ कितना स्पेशल था ना। तो आज फिर से वही मैजिक महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड गानों के साथ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं। हम हमेशा इस बात पे कायम रहते हैं क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती और ना ही वो गीत जो उन यादों को जिंदा रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो हर जनरेशन के दिल के करीब हैं, चाहे आप उन्हें पहली बार सुन रहे हो या सौवीं बार। यकीन मानिए, हर बार ये गीत एक नया एहसास दे जाता है। तो बने रहे हमारे साथ और इस संगीत भरे सफर का हर पल आप दिल से एंजॉय कीजिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: उम्मीद करते हैं कि दिल से आपने इस खूबसूरत शो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मिलने का हम वादा करते हैं।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक जनक जनक जनक जनक जनक तोरे बाजे पायलिया।
1: MBC Radio 24 hours a day.